0: जाप की संख्या असर्पियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। जब बीरबल ने देखा कि इतना प्रभाव रहा तो उन्होंने बीरबल ने गायत्री मंत्र की संख्या भी बोली बढ़ा दो, पर हम तुम्हारा 10 का 20 कर देते हैं।
1: अच्छा। और बढ़ा दिया,
0: डबल कर दिया। तो लोग सब कपड़ा पैसा चढ़ाए, असर्पी भी मिले। तो फिर ब्राह्मणों को धीरे धीरे ब्राह्मण ने वो 20 रुपये बोला कोई जरूरत नहीं 20 असर्पी की, ऐसा हो गया। तो ब्राह्मण की संत की नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी
2: जी।
0: दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे
2: जी।
0: भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया।
1: तो राजेंद्र जी, ऐसा होता है कि कहावत है जैसे कि तीरथ।
0: हाँ।
1: तो तीरथ जैसे हम सब जाते हैं तीरथ स्थानों पे ना, तो तीरथ सिर्फ वो नहीं होते, कहावत है कि जैसे कि जो चलते फिरते तीरथ हो जाता है। तो ये ऐसा वृतांत हो गया ये ब्राह्मण।
0: हाँ, ब्राह्मण क्योंकि ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जब सिद्ध हो गया तो ब्राह्मण सिद्ध हो गया, और फिर लोगों का ब्राह्मण का प्रभाव इतना हुआ कि लोग आकर्षित हो गए, वो खींच के आने लग गए।
2: अच्छा।
1: क्योंकि यह सभी को नहीं हो सकता, पर जो जिसके पास वो सिद्ध ना होता है, सिद्धि हो जाए तभी हो पाएगा।
0: फिर ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अखबार को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला किया।
1: आगे से तो बादशाह ने तो इसे कुछ गड़बड़ कहे थे।
0: हाँ, तो बादशाह को क्या पता रहा कि वो ये वही ब्राह्मण रहा जो
1: नहीं पता था।
0: आगे से साधारण वहा ब्राह्मण
1: भिक्षुक।
0: हाँ, भिक्षुक रहा, ये अब सिद्ध हो गया ना।
1: अब सिद्ध हो गया।
0: तो अकबर को भी जब खबर लगी बादशाह को, तो उसने सोचा कि मैं भी चले जाऊं, कैसा ब्राह्मण रहा
1: देखते हैं।
0: हाँ। जाने का फैसला लिया
2: जी।
0: तो वह शाही तोहफे लेकर राजसी थाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े।
2: हाँ।
0: वहां पहुंचकर शाही भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया।
2: हाँ।
0: ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित शाही हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। फिर जब बीरबल ने अकबर ने दर्शन किए, तो सोचा कि यार, उसको लगा कि हाँ कुछ है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है। तो वो जब दर्शन करा ब्राह्मण का, फिर बाहर आया। तब बीरबल ने पूछा, क्या आप इस संत को जानते हो? फिर बीरबल पूछिला,
1: बीरबल ने
0: संत को न जाने
1: तो क्यों ना एक गीत चला देते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ, इसी
1: क्योंकि संता ने पिटारा भर करके लाए हैं, और हम सब गीतों बस 3-4 ही चला पाते 2 घंटा के अंदर अंदर।
0: हाँ,
1: में उसे असलियत में तो वो ब्राह्मण को पहचाना नहीं मेरे ख्याल से
0: ना,
1: क्योंकि अभी प्रश्न रखा उसके पास ना।
0: हाँ।
1: तो अभी दोस्तों हम सब एक शांता जी आप कुछ कहने वाले।
2: हाँ, तो देखो ना, अगर कोई के ऐसे ऐसे हमने कहा बीरबल बादशाह के ना, तो बादशाह ने उस भिक्षुक के ऐसे कह दिए कि भिक्षु वो बात से अपन सीढ़ी बनाकर और उतना ऊपर पहुंच गए कि जहाँ पर अब बादशाह गए ले उनका दर्शन करने के लिए, और उनको पता नहीं है कि वही है भिक्षुक है। हाँ, अच्छा, पर इतना तो यहाँ तक हमको पता है। अभी एक गीत के बाद में हम उकर और आगे में सुनेंगे कि व्यर्थ्या कैसे हो और आगे में कैसे इसका बढ़े।

0: जय भोले है तो गजबी कहानी, बहुत ही सुंदर सुप्रसिद्ध साईं भजन जो सुना है, बड़ा ही मनमोहक रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर, अकबर और बीरबल की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और ब्राह्मण देवता की तरफ बढ़ते हैं। तो अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज आप इसे अच्छी तरह से जानते हो, यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा न रही, बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? तो जब अकबर में देखा कि उस दिन तो भिखारी ब्राह्मण रहा और आज इतना बड़ा कि मुझे भी दर्शन करने का जाना पड़ा और वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो ये सब कैसन रहा ला? तो अकबर बीरबल से पूछे आगे। तो बीरबल कहेला कि महाराज वह मूल रूप से मैं ब्राह्मण ही है, परिस्थिति बस वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। वो कहा कि उधर रहा तो ब्राह्मण, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि वो उसका जो धर्म है उस पर ना उतर पाए पूरा, इसलिए वो थोड़ा दूर हो गए। पर धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया, यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। वो बोले कि देख लो, एक मंत्र ने ही इतना उसको महान बना दिया कि अकबर भी उसके चरणों में जाके गिर गया। तो यह नियम सभी ब्राह्मणों के समान रूप से लागू होता है, सभी ब्राह्मणों के लिए यही नियम लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसान और तप से दूर रहकर जी रहे हैं। ब्राह्मण के जो दशा है इस समय, वो अगर किसी की खराब है तो वो अपने तप से दूर रह रहे हैं, नहीं तो सब ब्राह्मण अच्छे से मोई से रह ला इधर। इसलिए पीड़ित हैं, वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म में जुड़े, अपने संस्कारों को जाने और माने। मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्तियाँ उसका साथ चल पड़ती है। तो ब्राह्मण की ऐसी शक्ति है कि अगर वो अपने कर्म में चले तो देव शक्ति भी उसके साथ साथ चलती है। और इस प्रकार का जो अकबर को एहसास हुआ कि ब्राह्मण कितना महान है, तब जाके उसको हुआ।
1: तो राजेंद्र जी, इस पे जब देखा जाए कि सभी को अपना अपना और स्वाभाविक रूप से अपना अपना तरीका रहना चाहिए
0: जी,
1: तभी उसमें और तरक्की हो पाएगा।
0: हाँ,
1: और जो अपना तरीका से नहीं रहेंगे लोग, क्योंकि हर बार ये कार्यक्रम में रखते समय ये तो हमारे विशेषज्ञ लोग हम लोग के लिए सब खोज कर रख देते हैं, पर हर बार ऐसा होता है कि लोग इस पे ऊंच नीच बड़े छोटे करने लगते हैं, पर इसमें महत्व ये है कि सभी को अपना स्वाभाविक रूप में और रहना और अपना रहन सहन करना, तो कोई प्रकार से और इसमें तकलीफ नहीं होने वाला। इस पे भी एक राजेंद्र जी, कभी हम लोगों ऐसे होते कि हम लोगों ने अपना मातृभाषा जो हिंदी है उसे तो हम कोशिश करते रहते हैं सीखने के, पर देखा जाए कि ये एक देश है जहाँ पर हम लोग के सिखाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, और तैयार है सिखाने के लिए, पर हम सब इतना भीड़ भाड़ में जी रहे हैं और जीते जीते बस समय विपरीत हो जाता है, अब बूढ़ा हो जाते हैं, सीख नहीं पाए कभी काल के। और ऐसा है कि हम लोग के लिए इतना सो फिर मोखलक है इधर फॉर ऑन्स ऑम द लेरन, ऐसा है कि ना शांता जी?
2: एकदम से सहमत है।
1: इसमें एक है जैसे कि हमारे ICC होते हैं ना, तो हम लोग के लिए हिंदी का और संस्कृत का आदि सीखने के लिए जिसे इच्छा है तो सब चीज़ वहाँ मुफ्त में, और ना सिर्फ वहाँ पर भी कितने और ब्यूर्थ है और भी स्थाने हैं जहाँ पर हम सब के लिए लोग तैयार रहते हैं सिखाने के लिए। तो इसमें जब देखा जाए कि जो आज का विशेष और विषय रखा गया कि ब्राह्मण का महत्व, तो हमारे पुरुषोत्तर में एक मंत्र होता है ना कि कि वो मंत्र से हमें इस बात को ज्ञान होता है कि हमारे जो शरीर को अंग है ना, तो उसमें कहाँ और कहाँ कौन बसा हुआ है। जैसे कि ब्रह्मनश्य मुखमा सिद्ध बाहुरा जन्य कृत उरु तदस्य यद्वस्य पाद्भ्यम सुद्रो अजायत। तो इसमें हमारे शरीर के अंग में, हमारे शरीर में सब कुछ बसा हुआ
2: है,
1: सब कुछ बसा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी, इस समय आप जोर तोर से गाना का तैयारी में भिड़े हुए हैं। हाँ। शांता जी,
3: पर अपने राह से आप भटक गए, आप कुछ और कह रहे थे।
1: राह से भटकना तो लाइव प्रोग्राम में तो ऐसे हो ही जाता है। नहीं, बस वही वृतांत के बारे में रहा शांता जी, कि हम सब इसे कोशिश करें पढ़ने के लिखने के। हाँ। और ताकि हम सब अपने जो कभी उल्टा और ऊंच नीच बना देते हैं, इस पे ध्यान दे सकें। राजेंद्र जी, अगला गीत जो हमारे पिटारा से निकाला गया है, कौन सा गीत है?
0: और पिटारा से निकला हुआ गीत जो है, एक ज्योति बहुत सुहानी।
1: तो ज्योति बहुत सुहानी, और हमारे कार्यक्रम के नाम है
0: ज्योति का
1: प्रकाश। तो लक्ष्य यही रहता है कि हमारे जो जीवन के ज्योति जो जल रहा है, इसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके।
0: हाँ, यही लक्ष्य रहा है।
1: तो क्यों ना गीत को चला देते हैं।
0: जरूर।

0: सुहानी।
1: एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति बहुत मिल जाए। तो संजय जी, आप शक्ति के बारे में कुछ चाहे बोले?
2: नहीं, शक्ति के नहीं, पर कुछ और चाहता हूँ बोलने।
1: बोले, कह दे।
2: कह दू कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो राजेंद्र जी, यही बात हो जाता कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो आज का विषय में तो हमारे विशेषज्ञों ने, मैंने सोचा था ये तो हो ही नहीं पाएगा आज, पर इसे तो हम लोग के तो पर रखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा से इसके बारे में कि कपूर और सुखियों में है, क्या इसके बारे में हम सुना सकते हैं अपने सुनने वालों को कि नहीं?
1: जरूर, हाँ, कपूर सुर्खियों में है, इसके बारे में तो हमें लोगों को सुनाना चाहिए।
2: सुनाना पड़ेगा,
1: सुनाना ही पड़ेगा,
2: क्योंकि हम जैसे कि हमारे खोजी सेना है ना, तो उन्होंने हम सब के लिए सब कुछ खोज करके रख दिए। मेरे ख्याल से इसी कारण ये वृतांत भी इसी में रख दिए गए।
1: जरूर।
2: तो दोस्तों, आप सुनते रहना, और राजेंद्र जी हम सबको और उस ओर ले जा रहे हैं, तो सुना दीजिए राजेंद्र जी।
1: डॉक्टर भी कपूर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक जिस कपूर के धुएं को पर्यावरण विधि ने प्रदूषित कहकर खारिज कर दिया था, आज वही धुआं संकट में प्राणवायु बन गया है।
2: कपूर?
1: हाँ, कपूर। कैसे प्राणवायु बन गया है? प्राण का संकट जिसमें रहा प्राणवायु, कहे कि जिस धुआं को लोग कल तक प्रदूषण कहते थे, उसी धुआं को प्राण की वायु मतलब अच्छा मानने लगे। तो कैसे मानने लगे, इस पे विचार विषय है। एक समय था जब प्रत्येक घरों में सुबह शाम कपूर की आरती गाई जाती थी। संपूर्ण घर में कोने कोने में कपूर का धुआं किया जाता था। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को कपूर की आरती दी जाती थी, जिसमें जलती लौ का धुआं दोनों हाथों से लेकर चेहरे से लेकर सीने तक हथेलियां फेरी जाती थी।
2: ऐसा?
1: हाँ,
2: पहले
1: किंतु
2: तो राजेंद्र जी, ऐसा अब क्यों नहीं होता?
1: अब क्यों नहीं होता, वही तो विषय है। वही क्यों होने वो लगेगा, उसी की तो बात चल रही।
2: वैज्ञानिक के माध्यम से अब
1: हाँ, विज्ञान के माध्यम से लोग सब समझने अच्छे से समझ जाते हैं, तो वही विषय आगे का है। किंतु आधुनिकता मतलब अभी की जो बात है, अंधी दौड़ और चंद किताबें पढ़कर पाई डिग्रियां की आंखट घमंड में हम इतने चूर हो गए हैं कि इन्हें अंधविश्वास मान लिया। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम आरती हमें ढोंग और समय बर्बाद करने लगी। अब का जो किताब डिग्री डॉक्टर हो गए हैं, वो सोचते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम को भी नहीं मानते हैं। तो इसी पे आगे का जो मेन विषय अब आने वाला है, वो इसी की बात कर रहे हैं। प्राणवायु कर्पूर आरती धुआं लगने लगी। खुद को वैज्ञानिक समझने वाले हमने ये नहीं जानते, को जानने की कोशिश भी न करे कि आखिर हवन कर्पूर रीति रिवाज हमारी जीवन शैली का हिस्सा क्यों थे।
2: पर राजेंद्र जी, ये लोग कहते थे कि कपूर से धुआं होता है वो घर काला होता है।
1: हाँ,
2: तो वो उसमें तो बात सही है।
1: हाँ,
2: कि थोड़ा काला होता था। वास्तव में ये उसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो हमारे सेहत के लिए खराब है।
1: ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे पूर्वज विज्ञान से भली भांति परिचित थे। सनातन स्वयं एक विज्ञान है, लेकिन उस वक्त कोई वैज्ञानिक शब्दावली तो थी नहीं, अतः उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़कर दिनचर्या का अहम हिस्सा बना दिया। आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान रहे हैं, आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर माना है।
2: वैज्ञानिक माने तो
1: रिसर्चर।
2: हाँ, खलेरदन है।
1: खलेरदन कि जहाँ नित्य हवन होता है, वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
2: अरे राजेंद्र जी, थोड़ा से इस पे थोड़ा से ठहर जाओ, क्योंकि यहाँ से गीत चला देते हैं।
1: हाँ जरूर, एक पहले गीत,
2: क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ मन करता है कहने को।
1: हाँ जरूर।

0: मार सके ना कोई, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है और अटल विश्वास है तो उसका कोई मार ना सके, कोई एक रोवण बिगाड़ ना सके।
1: ये तो बड़े बात कह दिया शांता जी,
0: बड़े बात नहीं है ये, सही बात
1: बहुत
0: है,
1: बहुत बढ़िया, सही बात, सही बात, बहुत मोई, बहुत।
0: और कहते हैं कि मानना ना, जानना नहीं, मानना चाहिए भगवान को,
1: सही बात,
0: जाना तो चाहिए पर मानना चाहिए।
1: और ये जरूर कहना चाहूंगा राजेंद्र जी कि जल, जो जल होता है ना, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम अभी कपूर के बारे में कुछ हमारे विशेषज्ञ लोग जो हमारी खोजी सेना हैं हम सब के लिए रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके बारे में सुना देते हैं कि कपूर का महत्व जो आज हमारे पास है उसके बारे में और जानकारी रखते हैं।
2: हाँ, आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान गए हैं कि जहाँ नित्य हवन होता है वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
1: कोविड का खतरा,
2: यानी कि कोरोना,
1: कोरोना का।
2: मात्र 3-4 दशक पूर्व तक प्रत्येक घरों में हवन होते थे, किंतु आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ और सनातन का पिछड़ा मानने की मानसिकता के चलते हमने सब कुछ भुला दिया। आधुनिकता का मतलब होता है कि आजकल के जमाना नया, नवा चले रहा सब यंगरा।
1: हाँ जी।
2: तो वो पिछले जैसे बूढ़ो लेकर वो न माने ले कोई
1: नहीं,
2: तो
1: जैसे कि आज पहला वृतांत में हम सब रखे गए थे। पहला वृतांत में रखे गए थे कि बूढ़ा नाना वाला ना, कोई मानता ही नहीं आ जाओ नाना को, पर काम किसने निकाला?
2: नाना ने।
1: हाँ, क्योंकि ऐसा बात सुन के सभी पिछड़ जाएंगे, क्योंकि नदी में कैसे कहाँ दूध बह सकता है ना। और बस कहने वाला बात था, और उन्हें समझने के लिए बस हमारे जो पुरखों हैं उन्हें, उनके हम सब, उनसे हम सबको बहुत सीखना है।
0: और ये भी जो राजेंद्र जी ने पढ़ के और बताए ना कि पुराना के सभ्यता जो है तो आप आज के दौर में वो सब नहीं मानते हैं,
1: जैसे समय नहीं लोग देश में है।
0: और जैसे ये कोरोना आ गए तो वही सभ्यता हमको आज प्रयोग करना पड़ेगा कि हाथ जोड़ के नमस्ते करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, हाथ ना मिलाने के अब वो मिनहाई है ना
1: जी,
0: तो वो नमस्कार हाथ जोड़ के सभी को,
1: सही बात
0: तो वो भी सभ्यता पुराना के है और मानते नहीं थे लोग, और आज के दौर में वो भी। तो ऐसे भी राजेंद्र जी कह रहे कि कपूर के उसका
1: कपूर
0: वायु
1: प्रयोग करने से कौन कौन सा और जा करके उसमें हमारे लिए कितना प्रयोग करने से हमारे लिए कितना लाभदायक है, सही बात आप कह रहे हैं।
2: तो इसका दोष भी हमने अपने बड़े बुजुर्गों पर मर दिया, यानी उन पे कह गए भी दोष है, किंतु आपके बड़े बुजुर्ग तो पढ़े लिखे नहीं थे।
1: तो राजेंद्र जी, इस ये टुकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसे कम से कम आपको हमारे सरनामी,
2: इसके जो दोष रहिला उस सब बूढ़ों लोगों पे मर दिया जाए उन्होंने सोचा, लेकिन आपके लिए आपके बड़े बुजुर्ग तो बूढ़े लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, परंतु आप तो थे, वो न पढ़े लिखे थे तो आप तो थे, आपने क्यों नहीं रीति रिवाजों के पीछे छुपे विज्ञान की जानने की कोशिश की, जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे थे,
1: पर रीति रिवाज को
2: उसका विज्ञान क्या था,
1: विज्ञान के कैसे पाछे चलेंगे, कैसे खोज पाएंगे, कैसे जांच कर पाएंगे, तो उसके लिए तो कम से कम कुछ पढ़ना लिखना जरूरी है।
2: पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो भी वो विज्ञान था
1: उसके पास, था
2: तो वो विज्ञान हमें चाहे कंटिन्यू करे और उसको खोजे कि ऐसा क्यों है। तो जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं वो उसी को खोज के अभी भी अपना विज्ञान बना रहे हैं। तो कहने वाले हम ये भूल गए कि विज्ञान बिना प्रमाण के किसी को विश्वास अंधविश्वास नहीं मानता, फिर आपने कैसे बिना प्रमाण के मात्र दुष्प्रचार में बहकर सर्वश्रेष्ठ सनातन परंपराओं को अंधविश्वास ठहरा दिया। कहे कि आपने कैसे बगैर प्रमाण के हमारा जो सनातन का विश्वास है उसको, उनकी परंपराओं को अंधविश्वास, मतलब आंखी बंद करके विश्वास करे अंधविश्वास।
1: हाँ जी।
2: तो कैसे विश्वास करे, तो ये चाहे हमें ढूंढे कि इसके पीछे क्या विज्ञान रहा। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहा दुनिया का उसके वक्त, मानवता पर संकट के वक्त, आधुनिक दुनिया पुनः सनातन की शरण में है, सनातन हो गए सब, दोबारा से
1: सब हो गए,
2: सब हो गए।
1: जैसे शांता कह रहे थे कि हाथ जोड़ लो,
2: हाथ जोड़। तो हवन, कर्पूर, अजवाइन, हल्दी, हस्त प्रक्षालन, नमस्ते लड़ाई जीतने के मुख्य अस्त्र बन गए। हवन करे, कर्पूर से आरती करे, अजवाइन खाए पानी में उबाल के, हल्दी खाए, हाथ हस्त प्रक्षालन हाथ धोए और नमस्ते करे, ये चीज करे, नमस्ते करे, तो ये जो लड़ाई रहे कोरोना से जीतने की, इसी से जीत जा सके,
1: इसी से जीत जा सके। तो ये बात हो जाता है कि हमें कैसे उसे बच सकते हैं।
2: तो मजबूत, हाँ मजबूत
1: एक तरीका है।
2: तो मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आंधी तूफान झंझावतों में टिक पाता है। जो कल तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगी, हाँ। जिसके वृक्ष मजबूत रहे, जो वृक्ष मजबूत रहे, जिनका जड़ लंबा रहे, उनको कोई फर्क ना पड़े,
1: कोई फर्क।
2: लेकिन जो हल्का रहे उनको फर्क पड़े कल, देखना। अतः अपनी जड़ों सनातन से जुड़े रहिए, सनातन जो धर्म है उससे जुड़े रहिए, हम सबके लिए यही लड़ाई अवश्य जीतेंगे और इसी के बाद सब लोग जीत जा सके। तो क्यों ना हम आज अपना सूरीनाम, हमारा प्यारा देश।
1: राजेंद्र जी बस यही प्रतीक्षा था कि सूरीनाम, हमारा प्यारा देश, कम से कम सुना दो।
2: सुना देते हैं जरूर।

0: सूर्य नाम हमारा प्यारा देश, इससे मिलने को कोई इनकार नहीं। तो संजय जी, आपका सूर्य नाम इतना प्यारा देश है, आप कुछ बोले?
1: नहीं राजेंद्र जी, बोलू क्या, इच्छा कर रहा हूँ सूर्य नाम जाने को।
0: ओ, तो चला
1: और सूर्य नाम जाने को, तो वहाँ पर आपको पता लिफोर्नो का है ना?
2: राजेंद्र
1: जी,
0: जी
1: लिफोर्नो आपको नहीं पता का?
0: लिफोर्नो हम ना जाने लमान।
1: ये कार्यक्रम को सुनने वाले एक हमारे हर सप्ताह वो कार्यक्रम को सुनते हैं भाई सुग्रीम जी, जो कैक अर्थ और सरमक्का के रहने वाले।
2: अर्थ कैक जी, कैक अर्थ। हाँ, वहाँ पे गाड़ी वो नदी में गिर गया था ना उस समय पे, तो इसलिए वहाँ पे प्लस वन कैक अर्थ, अर्थ कैक धरती
1: ऐसे रख दिया।
2: हाँ,
1: तो यानी कि राजेंद्र जी अर्थ कैक के मतलब आपको भी नहीं पता क्या? ना,
0: ना, हम ना जान ला।
1: उसका मतलब ध्यान से देखना है। और ये कार्यक्रम जो हर सप्ताह वो श्रीमान जी ये कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, और उसके लिए भी हम सब किस दिन एक गीत भी रखने वाले हैं कार्यक्रम में। पर जी समय पे ध्यान देना है, और समय के माध्यम से हम सब अब वो सीमा पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें
0: पहुंचना चाहिए
1: कहीं वो गीत को और रखना है।
0: जरूर,
1: तो चला देते हैं और फिर उसके बाद में देखा जाए कि कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।
0: जरूर।

0: पुकारे।
1: हाँ जी सुनने वालों, जैसे आपको पता है तो यहाँ पर समय भी हो गए हैं, तो समय से पहले तो मैं भी ये कहूँगी कि पापा के होने से बचपन खुशियों के साथ में होते हैं, कि पापा के होने से बचपन खुशियों साथ में होते हैं, होते हैं हर राह आसान, होते हैं हर राह आसान जब मेरे हाथ पापा के हाथ में होते हुए। सुनने वालों, आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए। आपको शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

दूर है फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा, लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही ये गाना के बोल आते हैं सब सुनने वाले यही समझते होंगे और समझ रहे होंगे कि हमारा जो समय है 2 घंटे का वो यहाँ पे विराम लेने वाला होता है। और फाउन हिंदुस्तान रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय कार्यक्रम को लेके ज्योति का प्रकाश। तब तक के लिए सब

छोटे नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। मैं यहाँ से अपने विशेषज्ञों जैसे कि संजय शर्मा पहाड़गंज न्यू दिल्ली से, प्रवेश कालिया जो प्रधान बजरंगी सेना का है, और श्रीमती रत्ना जी जो दनहाख से है, हम सबके लिए कई मास खोज खोज कर रखते हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथी शांता खिमई, राजेंद्र सिंह और मैं हूँ आपका सेवक संजय। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदगी रहेगा। सभी को नमस्कार।

इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। रफी जी की आवाज़ में यहाँ से हमको सुनाएं आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में।

0: में आपकी हर बात रहेगी, दिल में आपकी हर बात रहेगी। जगह छोटी है मगर आबाद जरूर रहेगी।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को

जी, इतना सुंदर सा गीत हमको सुना है किशोरदा और लता जी। सुनने वालों, जाने कैसे कब कहाँ क्या हो जाता है पता नहीं, पर ये ज़रूर कहूँगी चाहे हम भुला दूँ ज़माने को बल्कि आपके प्यारे मुस्कान को हमेशा हम याद रखेंगे।

एक दिल ही तो था जो सिर्फ हमारा था। सुनिए जी, एक दिल ही तो था जो सिर्फ हमारा था, बातों बातों में उन्होंने इसे भी चुरा लिया।

0: प्यार भरे गीत आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है सुनने वालों। कहते हैं कि प्यार चाहे परफेक्ट हो या ना हो, पर सच्चा जरूर होना चाहिए। वो लव्स बने ही नहीं जो बयां करे कि मुझे कितना मोहब्बत है तुमसे।
1: पता है वो बहुत

जी हाँ, पल्लू लटके, पल्लू यानी कि आपने सुने पल्लू। कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, ये कहना नहीं आता। बस इतना जानते हैं कि, बस इतना जानते हैं कि बिना तुम्हारे रहना नहीं आता। फहम रेडियो पे आप ट्यून हैं

हाँ, तो आपने सुने ये सुंदर सा गीत, जिससे सोच कर ही चेहरे पर खुशी आ जाए, वो खूबसूरत एहसास हो तुम। और कहते हैं कि सिर्फ दो ही चीजों से डर लगता है, एक तेरा रोना और दूसरा तुझे खोना।

किशोरदा और लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने एक बार फिर सुने कि अब के सावन में तुम्हें दिल में कई बार याद करता हूँ, तुम्हें दिल में कई बार याद करता हूँ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बस तुम चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, ये मत पूछो क्यों चाहिए।

फिल्म बरसात की एक रात से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है। तेरी तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं अब सोचने लगा है कि हम की जिंदगी की हर लम्हे में तेरी जरूरत सी लगती है।

जरा फिर से कहना कि तुम राजा की रानी बनोगी। हाँ ज़रूर से बनोगे। और कहते हैं कि बवार वत फैन इज बवार वत फैन इज ऑफ लाथेत ऑफ एतनी ख्रोत ऑफ क्लेन इज बवार वत फैन इज ऑफ एतनी ख्रोत ऑफ क्लेन इज हाउ फर्स्ट वत रागत लास्ट लॉस वत नीत gelukkig maak. Dit gaat u ook heel leuk vinden. Een heel leuke gift ook voor u.

दया दया दया रे, और लाल दुपट्टा ले गए उड़ा के हवा ने, हवा के झोंके ने। जरा मुस्कुरा के तो देखो, हाँ जी जरा मुस्कुरा के तो देखो, दुनिया हंसती नजर आएगी। सुबह सुबह शेयर करके देखो, सुबह शेयर करके देखो, सेहत ठीक हो जाएगा। हाँ कर्ज घटा कर देखो, अच्छी नींद आएगी। मेहनत करके दे देखो, हाँ मेहनत करके तो देखो, पैसा की तंगी चली जाएगी।

ये प्रोग्राम आपके लिए यहाँ से आपिका फाउन यूनिस्तानी रेडियो से सजाया जाता है, बनाया और सजाया जाता है।

We hebben een geweldige nummer samen kunnen genieten. Doos de bijbeno. Ik choti si kahani aapko bata de suk aur dukh ke bare mein. ऐसे अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई दुख ने सुख से कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो दुख सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने के कोशिश में लगे रहते हैं तो सुख ने मुस्कुराते हुए कहा सुनिए जी भाग्यवान मैं नहीं तुम हो सुख कहते हैं कि भाग्यवान मैं नहीं तुम हो दुख बड़े हैरान हो गए तो दुख ने हैरानी से पूछा वो कैसे तो सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया जवाब सुनिए जी वो ऐसा कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं सुख कहते हैं कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाता है एक छोटी सी कहानी सुख और दुख के बारे में

खूब फरमाए। कुमार शानू जी और अलका याग्निक जी ने आपने सुने। वो लड़का और वो लड़की, हाँ खूब याद आती है और ज़रूर याद आएगा। मौसम जो हसीन है, चलो ये खूबसूरत गीत यहाँ से हम शामिल करते हैं।

एक बार आपने फिर से सुने कुमार शानू और अलका याग्निक जी की आवाज में, फिल्म का नाम है प्यार का रोग। हम खुश हैं ये जानकर कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, तो बहुत बहुत मुझे भी हर्ष हो रहे हैं। ये प्रोग्राम जो लाइव एंड डायरेक्ट आप ही के लिए प्रस्तुत किया जाता है, आपको तमाम खुशियाँ और खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

स्टैम्प अफवाह हिंदुस्तानी रेडियो योर लाइफ इन डायरेक्ट आपके लिए पहुंचाया जाता है आप ही का कमरे तक, आप ही का कानों तक। चलो शामिल करते हैं ये सुंदर सा गीत आपके लिए।

मित्रों, आप सभी का तनाव दूर हो और शांति, प्यार और खुशियां आपके चारों ओर हो। ईश्वर आप पर अपनी भरपूर कृपा बरसाए।

अच्छा आदमी अंत में इसलिए अकेला पड़ जाता है क्योंकि जिंदगी में आने वाला हर इंसान उसका फायदा उठाकर चला जाता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए मित्रों, क्योंकि अपमान वह ऋण होता है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है, जरूर चुकाता है।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा का अनुभव है।

दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और की विश्वास को परखा जाता है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वालों का कभी पेट नहीं भरता।

पैसे को तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। अपने अनमोल समय को व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए।

सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य लोक।

कुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विदिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यसु सर्वदा।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गई है। सभी को एक शुभ प्रभात कहता हूँ।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिए परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको फाइन अदाख्तु खवंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं फकांसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए है, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

कहते हैं कि आने के बाद एक दिन जाना भी है और जाना कहाँ है बस यही बात को पता नहीं है। सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

सुनवालों कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होते हैं। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसा भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं।

हमको मन से शक्ति देना। कहते जो चीज हाथ में ना हो उन्हें मन से भी आजाद कर देना चाहिए।

सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपका रेडियो इस समय चुन है फाहुन एफएम पे, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक देशों में सुना जा सकता है।

जो इस समय तैयार हो रहे हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए या सफर कर रहे हैं, तो आपको बहुत सा और ये कहना चाहूंगा कि अंदाख फॉल फ्रोइद। और गांधी जी का ये संदेश बोलना मत। उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो देश है हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना ये समझने वाला बात हो जाता है। गांधी जी का ये बात भी आपको जरूर ख्याल होगा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो।

कहते हैं कि उदासियों के विजय तो बहुत है जिंदगी में, कहने के तात्पर है उदास होने का वजह तो बहुत होते हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुशी रहने का मजा कुछ और है।

कहते हैं कि गरीबों के दुनिया जीने नहीं देते, पर इस बात पे किसी ने और कुछ लिखा है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है।

जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसे भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। रिश्तों का बगिया

फिल्म जो बनाया गया 1977 में, 1977 में बनाया गया फिल्म, एक फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, जैसे कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, प्रवीण भाभी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन।

एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया था जिसमें तीन बच्चे जो बिछड़ जाते हैं और फिर पालन पोषण जो अनेक अनेक संप्रदाय में होता है, एक जो जा कर के पुलिस बनते हैं, दूजा कवाली गाते हैं और तीसरा जो जा कर के बार कीपर बनते हैं। तो उसी फिल्म से एक और गीत हम निकालेंगे और आपके लिए रखने वाले हैं।

Shirdiwale Sai Baba, de film jo banaya gaya 1977 mein kaha jata hai ki 184 minute talak jinka run time yani ki kuch 3 ghanta ka film jo jinka aur release date 27 mai 1977 mein hua tha. Us samay jo ye film banaya gaya tha aur jinka lekhak khas karke Kader Khan ji ne aur ye film ko film ka writer kehlaye hai yani ki unhone film ko jo dialogue se apna aur sajaye hai aur direct jo kiya gaya hai Manmohan Desai ke jariye. सुनो वालों, ये एक ऐसा सुंदर फिल्म जो बनाया गया था उस समय के बात है जो काफी और चला बॉक्स ऑफिस में और जा करके जिनमें बड़े-बड़े एक्टर्स अपना सहयोग दिए. इनमें से सबका अपना-अपना होता है तो हमें जो उस समय का एक्टर हुआ करते थे जीवन जिनका डायलॉग का और प्राण जो होते थे जो उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन करते थे तो कितना खूबियां होते थे उसके. हम एक और इसी फिल्म से निकाला गया गीत रखने की कोशिश करेंगे.

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से निकाला गया जिसमें मुकरी का रोल भी बड़ा अजीब था, प्यार का दुश्मन बना रहा। और ये सुंदर सा फिल्म जो निकाला गया 1977 1977 में, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। सुनो वाले हम अगला गीत, जो आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं।

ये फिल्म डायरेक्ट किया गया मनमोहन देसाई। कादर खान को जो जानते थे, जो परिवार में जिसे वो जुड़ा रहता था, तो उनको कहावत ये है कि अपना जब डायलॉग उनके लिखने के समय आते थे तो वो भारत छोड़कर हांगकांग चले जाते थे। वहाँ वो आराम से अपना डायलॉग्स आदि लिखते थे और फिल्म को और सजाया जाता था। सुनने वालों, ये स्क्रीन प्ले जो किए है वो है प्रयागराज शर्मा जी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनंत बख्शी के लिखा हुआ लिरिक्स बाय अनंत बख्शी।

फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी। पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिनमें कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हो आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछुड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछुड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वाले ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कलीगा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था। फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

सुनने वालों, ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी, जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

कहते हैं कि दोस्ती इंतहाम लेते हैं दोस्तों, पर ऐसा ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता, अपने किरदार से इंसान खुद महकता है।

जिंदगी आ बैठ, है जिंदगी आ बैठ, कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गए होंगी मुझे भगाते भगाते। सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यहां तक मैं आपके साथ जुड़ा रहे। आशा ये रखता हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ चलाया गया। और यही आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर लगे होंगे। सुनने वालों, अगर आपको कोई ऐसा लगा हुआ होगा कि हमें अब अपना और सफ़र की ओर करना है, यानी कि सफ़र करना है अपना, और कोई प्रकार से जैसे भारत और ऐसे मलेशिया कितने सुंदर सुंदर देशों है जहां देखने के चीज़ बहुत है, जैसे कि कहीं भी जा सकते हैं और अपना सफ़र करने के, यानी कि फकम सिफिरन

आप जरूर अपना ध्यान रखना और ये बात मत भूलना, सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होता। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

0: खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकारे दिया।
1: क्या कहते हो मोर बच्चा?
0: हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, नाराज न होइए जी, नाराज न होइए।

जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आते हैं वक्त नहीं। आपको बड़े प्यार से हम यहाँ से आपको स्वागत कर रही हूँ सुनने वालों। और यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे मेहंदी हसन के खूबसूरत आवाज़ में एक सुंदर सा गीत, यहाँ से आपके लिए पेश करेंगे।

जाने जा तू जो कहे, मेहंदी हसन के आवाज़ में हम सभी ने सुने। तो किसी ने क्या खूब कहा है सुनने वालों की, जो जो क्लॉप होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि फॉलो योर हार्ट वन दी क्लॉप या

सुनने वालों, मोहब्बत तो ज़िंदगी है, मोहब्बत से आप और हम, मोहब्बत से ये जहान है। और कह रहा कि लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है और प्यार की ज़रूरत दिल में होती है।

हाँ जी, हमने सुने। आप सोचते होंगे कौन ये गीत को गाए है, तो हम आपसे बता दें, नूरजहान। जी हाँ, नूरजहान के आवाज़ में हम यहाँ से सुन रहे हैं ये सुंदर सुंदर सा गीत।

नाम से तुझे पुकारो और क्या नाम है तुम्हारा, हाँ जी बता दे तो अम्मा आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। ऐसे ही वो शोले में बसंती से पूछ रहे थे।

चार हुआ जो हमने सुने, और ये भी एक बार जो हमको फिर से सुनाई, और वो भी है नूरजहान की आवाज़ में।

इस सुंदर गीत जो हमने सुने और सुनाए हमको महेंद्र कपूर जी, सुरेश वर्तकर, उषा खन्ना, सुंदर सा गीत जा देखा तेरा वादा। जीवन एक यात्रा है, जी हाँ जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी। जीवन रोकर जिएंगे तो बहुत लंबी लगेगी, और हंस कर जिएंगे तो कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा।

आया या करो मैं क्या सुकू सुकू हमने सुने फिल्म जंगली से जो फिल्म जंगली से जो ये सुंदर सा गीत निकाला गया है और हमारा मरहूम मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हम सब मिलकर सुने।

0: म्यूजिक।
1: जिंदगी वाकई में इम्तिहान ले लेती है सुनने वालों। जीवन से सबसे बड़ा, जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है? हाँ सुनने वालों, जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है? आपका वर्तमान, हमारा और आपका वर्तमान। वर्तमान जाने की इस पल ऑफ दिस मोमेंट में ये हमारा सबसे महंगी चीज है, वर्तमान। आज इस पल, इस वक्त, जो एक बार चला गया ना, तो फिर पूरी दुनिया के संपत्ति से भी हम उसे वापस, हम उसे खरीद कर नहीं ला सकते। और समय के बाद सुनने वालों, घड़ी, हम यही दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु से, परमात्मा से कि हे कान्हा, मेरी एक ही प्रार्थना है कि महंगी घड़ी सबको देना। हाँ सुनने वालों, कि महंगी घड़ी सबको देना, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को ना देना। हाँ, इसमें भी एक अंतर है कि महंगी घड़ी पहनने से तो वक्त तो चलेगा, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना मिले।

0: सूफी।
1: आज तू प्यार और तू प्रीत, तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। वाकई में सुनने वालों, और आपको सुनाए किशोर और लता जी ने, पराया धन फिल्म का नाम है। चादर बड़ी कीजिए ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। चार दिन की जिंदगी है, चार दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान कीजिए, ना परेशान किसी से, ना परेशान किसी को कीजिए। जी हाँ, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए।

फिल्म का नाम है और किशोरदा के आवाज़ में हम सपने यहाँ से मिलकर सुने हैं। सुने वालों, ना रूठा किसी से कीजिए और ना झूठा वादा किसी से कीजिए, ना बिल्कुल ना करना, ना रूठा किसी से कीजिए ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए। सुनने वालों, कभी खुद से भी मिला कीजिए, जो सबसे कठिन काम है खुद से मिलना, अपने आप को पहचाना, अपने आप को जानो कि आप कौन हैं। हाँ सुनने वालों, तो कभी खुद से भी मिलने का, हाँ अपने आप से मिलने की भी कोशिश कीजिए।

यार तुम्हारी पुकार है कि तेरे बिना जिया जाए ना। आपने सुने अदनान साहनी जी के आवाज़ में। आपसे बता दे कि चुंगली सुनना, चुंगली चुंगली रोदल स्लख प्रातो फिर में ईमान कि चुंगली के धार इतनी तेज होती है, चुंगली के धार इतनी तेज होती है जो फ्लेम्स मैस या जैसे स्केर मैस इतना इतना स्कैरप होते हैं कि चुंगली की धार इतनी तेज़ होती है कि खून के रिश्तों को भी अलग कर देते हैं।

की पुकार जो कह रहा है, दिल कह रहा है अदनान सहनी से हमने सुने। रिश्ते कम बनाए पर उन्हें दिल से निभाए, रिश्ते कम बनाए पर उन्हें दिल से निभाए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। सुनने वालों,

क्या खूब कहा है सुनिए जी, कि किसी को दुख ना दो, किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना ज्यादा होकर लौटती है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप कैसे इस पर दिमाग भर भिराते हो सुनने वालों की, किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना ज्यादा होकर लौटती है। एक बार फिर सुनेंगे अदनान साहनी जी की आवाज में तेरी कसम।

रोमांटिस माहिया अदनान सानी जी से हमने सुने। जिंदगी में, जिंदगी एक आईना की तरह है। आप थोड़ा सा मेरे साथ कल्पना कीजिए कि जिंदगी एक आईना की तरह है, अगर आप इसे देखकर मुस्कुराओगे तो ये भी आपको देखकर मुस्कुराएगी। जरा शीशे के आईना के सामने आप खड़ा होकर देखो, आप जैसे करेगा आईना वैसे ही आपके करेंगे, आपकी नक्शे ही उतारेंगे। सुने वालों, इस बार हम सुनेंगे की आवाज में कि जरा सा

के आवाज़ में हमने सुने सुने वालों एल्बम का नाम है जन्नत, और उन्हीं के आवाज़ में हम आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं, और फिल्म का नाम है गैंगस्टर अ लव स्टोरी।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ। शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी।

ऋषभ है तू ही मेरे रब है, फिल्म का नाम है गैंगस्टर और लव स्टोरी। और सुनाए के जहाँ ने के जैसे आपको पता है तो इसी साल में इनका ध्यान हो गया है इन अंदर तक में 2022 3 5 तक यार खलीफ टाइप पे।

जी इतनी कम उम्र में और ये शख्स जो है, ये गायक जो है, तो आप नहीं रहे फिर भी हमको इतने अच्छे अच्छे से गीत जो यहाँ हमारे खातिर जो छोड़ के चले गए, जिससे हम आज इसे सुनते हैं और सुनाते भी हैं।

आशिकी है, हाँ तू आशिकी है, के और कोरस से आपने सुने। और मूवी का नाम हम देखें तो झनकार बीट्स, हाँ जी मूवी का नाम है झनकार बीट्स, और म्यूजिक कंपोजर है विशाल और शेखर जी, ये म्यूजिक कंपोज की है। हम दुनिया से अलग नहीं, हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। जिंदगी में इतना मुस्कुराओ सुने वालों, कि जिंदगी में इतना मुस्कुराओ कि जिंदगी भी देखकर मुस्कुरा उठे। क्या बात है,

0: अभी आप सुन रहे थे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। एक बहुत से सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, शबीर कुमार और लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी बेताब से हम पेश करते हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। सोनी मेरी सोनी सोनी अनवर के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं

आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सोनी महिवाल से, अनवर और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे सोनी मेरी सोनी सोनी, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फ्रॉम द मूवी सड़क से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम जो ना आते तो हम मर जाते। मनहर उदास के साथ में अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सड़क से हमने पेश किए हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ओ दिल भर जानिया, फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं आपको सुनाने वाले हैं लता जी के साथ में शबीर कुमार जी।

लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे वो दिलबर जानिया फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं। इस तरह आशिकी का अशर छोड़ जाऊंगा अमित कुमार आपको सुनाने वाले हैं।

अमित कुमार आपको सुनाने वाले थे इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे समाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम चाहे न चाहे समाना, अलका याग्निक के साथ में अभिजीत आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों एक और गीत हो जाए आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा से पॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: Arrêtez les choses. You sitting? A hurry, Morris.
1: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में, केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

Kalana jani uchinich, kalana jani jan, Sorsuti Manta DJ, Hamko apni aashirvaad. तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम से शिकाल है जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारा प्यार की पैगाम

बड़ा बड़ा खबर आज है सूरीनाम देश की और अन्य देश की और देशों के समाचार हम आप लोग को आज रिश्तक से सुनाएंगे।

हमारी जनता अब देखो भैया सूरीनाम में नवा रखे रिंग तो तुलो जाने एक बड़ी सोई गए है और ओ सब लाइफ मार मेंज हीर एंड दार तखान बनूम और आप लोग जानो भैया एगो एगो ओ अरे भैया पास्टर है मैं ये तो लोग जानो ये हुई मैं ये है का बोले एगो पास्टर है तो एक के सबन मांगे है रखे रिंग रखेरिंग फिनिश यानी कि एनपीएस के अने रुसलांत के और एनडीपी के रखेरिंग गर्गरी रुसलांत और जीमोन एक के बनुम करी से मैय के इसराइल के अम्बाजादर तो एकर बारे में वही के क्वालिसी पड़ती है और फ्रैक्सी लेडर सेल्फ एनपीएस के वो है जेरल पावी रेजो और ब्रोंटो सुबह हार्जो पेयल के बोले सबन बहुत फरपास है कि रखेरिंग जोन है बोले हैगा ऑन डांस बोले हैगा एंकले यारन पार यार खली ने इला पालास्टाइन के एरकेन करी से जैसे को देश और बोले तो इस अब का करे है जाए के इसराइल में बिशप स्टीफ मेयर के बनुम करी से हुआ रेसी देरेंद अंबासाडर फॉर सूरीनाम से फंड स्टार्ट इसराइल मलाई पावीरो बोले है भैया पावीरे जो बोले हैगा बस लेटन हैंडलिंग इसराइल के तीखन ओवर द पालेस्टाइनन फुलकॉमन इंस्ट्रेशन में ने नॉर्मन एंड वार्ड फॉर सूरीनाम एकर मारे में मेल्विन बोफा बैतलांस साक और इंटरनेशनल हैंडल के बोले है दैट सूरीनाम बस्टांड बिलैटरल रिलेशन विद इसराइल फॉल्स हेम हीव द लैंड सेल्फ प्रोजेक्टन en die nog lopend zijn voor Israël willen hier projecten krijgen willen hem ook contacten hebben te willen kiezen naar te willen landbouw bole landbouwinitiatieven projecten gezondheidszorg bole campus van universiteit voor vloeien van uitbestaande relatie doen hij Israël kerbaar in Boufa bole he volgens de minister in het standpunt van Suriname uit 2011 onveranderd bole hem lukke he NPR fractieleider Pauwie Regio stel dat je Suriname een vreedzame samenleving is waar alle etnische en religieuze groepen al eeuwen met elkaar in harmonie leven. Het vervreemd hem daarom dat de regering jijke Israël mee en jijke ambassade dharen heeft meegeke. Bole in maart van dit jaar heeft het parlement van het land een wet lezen dat doodstraf doet gelden uitsluiten voor mensen door etnische groepen, religieuze geloof voertuigen. De Palestijnen, dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Bolle volgens NPS heeft Suriname pas 95 meer. Ego bolle na de apartheid was afgeschaft diplomatieke relaties uit Amerika, Zuid-Afrika aangeklopt. Toen ik er waren bolle 80.000 mensen zijn omgebracht in Israël. Deze stad van Surinaamse regering roept daarom vraagtekens bij hem. Bolle Israël ze bolle ze contacten na chahin. Hamluk ambassade hoe na chahin ga. Omloon toeloon jane hega Israël. Palestijnen ke utraafde musulman ke hua dagi se aur tulo jano ho so mohar jo wo bhi musulman hai aur ek wa malai bhi musulman hai to usab natuurlijk voor de muslim chief se opgenomen ki palestijnen ke dagi se utraafde aur bole hum log ke hiya ke ambassade jayega hua israel mein aur baufa bole hai israel ke bole ke tra project ab ni suriname mein chale hai bole hum log ke khadnu sakhle kega NDP-parlement E.B. Jones verdedigde het besluit van de regering en stelde dat intussen 13 CARICOM-landen diplomatieke banden hebben met Israël. Aan de andere kant houden CARICOM-landen, inclusief Suriname, zich aan de VN-resolutie van de staakt te vuren en het recht van een Palestina naar bestaan. 11 van de landen hebben de VN-resolutie met betrekking tot Gaza en Palestina ook ondersteund, mensen. To E.B. Jones bhi bole hai chahenga ambassador ho dhare ke
तो एकर बारे में भैया हम जाएला सूरीनाम में बाप रे बाप सिपाहियन हुआ का करे है दादा रे दादा बड़ी आफत के बाद तीन गो अंदर ऑफिसर एगो देई पे भैया अख्तन डरत एगो ए हाफिरन डरत और देई टू फिरत इस भैया मदरक्स के बारे में फरदोफन मिदल भैया एंड देई नेम अन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आन को अंदर ऑफिसर स्कोतुरा भाई द द्रीताल अलैन ब्रिगेडियर रहा फन पुलिस इस फोर खलेने हम सिपाही अब सबके अंदर सुख करे नारकोटिका के द De afstemming met de openbare ministers en de verdachte politieambtenaren. Hangende onderzoek door de politie. Kijk daar hem tje laai bolila. Kie Suriname ket heer sipahi ke bhaiya. Biswaas na hai. Dekhyo mahanga mahanga auto chalawe bhaiya. Puchye kitra salaris hai. Ta u salaris se admi khali ghar chalai seke. Ta tu kahan pahile baate itra dher paisa. Aur jai ke baki huwa pe bhaiya. Glat hai. Glat. सिपाही इस सब अंडरसुक ना करे ब्लास्टिंग दीज और वो सिपाही लोग के अब देख पकड़ी से तीन गो जो दृक्ष इधर से उधर कारबार करत रहा और तुलन जाने कराकाम जब सुनियो भैया ते कराका में बोले दृक्ष जरे हैगा उची जो बारा ऑन ऑन बन बन एक विश्वास करे लायक ना भैया हाँ अब जाइए भैया सूरीनाम से फरेनिंग फन इकोनॉमिक सा इकोनॉमिस्ट इन सूरीनाम का नाम बा फेस उस बोलेगा बखरेब द बसलेसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन और टाइटन सूरीनाम की बोले हैगा वेरल्ट वेट बोले बकेंट हैगा कि इंटरनेट इंटरनेट दिस दोन स्टारलिंग के geen dienst in Suriname te laten aanbieden. Volgens beschikbare informatie is Suriname de enige land in Zuid-Amerika waar deze niet wordt toegelaten. Bhaiya, of festieven Debi Persaat bole hega IBC me bole hega moeilijk na samaj pawe u ki kahe ke Starlink volgens hem voordelen kan bieden voor de overheid en afgelegen gebieden. Telecom providers zouden daardoor niet over al dure infrastructuren hoeven aan te leggen. Toen waren een beetje over al die hebben ja fest ke bare mein लेकिन न्यूज ज्यादा है तब देखो भैया हम जाए साउथ कोरिया में भैया हुआ के वो पुराना मिनिस्टर 25 बरिस के जहल पाई से साउथ कोरिया के बातचीत है 25 बरिस के भैया फॉर रोल इन नो टू स्टैंड के बारे में वो रोल ओके रहा तो एक 25 यार के बोले जोनी परसिस करी से काम तो हुआ के पुराना मिनिस्टर यूसुशी के साउथ कोरिया के ओका नाम बा Park Chung Yee बोले रेख बांग साउथ ने सियोल में 25 बरिस के जहल पाई से रेखतरों के बहुलक बोले फल दूंद अने भवेश पाई से 2024 में के को बड़का रोल खेल रहा है अफकोंदक फन स्थान फन बलेख दौर प्रेसिडेंट यूंग सुक्यूल बोले हैगा अने प्रोबेर Met de noodmaatregelen in het parlement buiten spel te zetten. De oppositie met meerderheid in het parlement zou nauwe banden onderhouden met Noord-Korea. En alles aandoen om het beleid van de regering te frustreren. Volgens Yoon waren dat voldoende redenen om een militaire noodstand uit te roepen. Deze duurde slechts enkele uren. Ondanks een blokkade door de leger bereikte parlementsleden toch de vergaderzaal. Want ze resolutie aannamen om de staat van beleid. Terug te draaien mensen. Bolus Reuterrol bij de toestaan. De ISEP regering kebaantje te bija. Jahan pe tu jane ego baitheet. Ek wak oise karet. Ek wak oise karehe. To ye baat hai hamare janta South Korea ke baare mein. To hamare pyare pyare mausi lon bija. और ये यानी कि मैं के बारे में तो अभी आप लोग को हम बता चुका है कि एकर बारे में दीबतेर सब करे है पार्लियामेंट में कि एक के सब दुई मिला ना मांगे है और दरस आदमी मांगे हैं कि पालस्तीन के अने इसराइल के अंबासादर बने के और
sorry hai maye ke bare mein bhaiya bari garmi hai ha colder road in states mere europe london vanwege extreme hitte garmi bahut hai nederland bole for als nog sprake is van code oranje hier bij nederland mein oranje hai oranje hai wordt in states europe landen code rood afgegeven vanwege extreme hitte italië mein bhaiya bole hai bole in minus 15 steden 15 शहर में सेवन कोड रोड करी से रोमन में मिलान से इन वोडर्स अपगरूबन बोले तेजस वर्मस्ट दाग दिले बिनंत ब्लेवन भीतर घर में रहिए और बोले जियो कूलिंग खोजियो Frankrijk bole hega gaat gebukt onder de hittegolf 54 departementen is code rood aangekondigd. Niet eerder waren dat er zoveel of veel plekken die 40 graden hebben via Frankrijk mee. Zouden Franse scholen schooljon hega zouden go bole hitte se ban hoege he. Fransen gaan zwemmen ter verkoeling. Sinds het weekend zijn zo'n 20 mensen verdronken. Ook mensen na de nieuwe paure via de paard. Die naar die dusse me na halie. Aure bolle Franse autoriteiten waarschuwen kregen. Ki jayo pade paure te na burio ja risico barka hai voor de uitdroging. Franse kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater warm was geworden. Kernreactor die nee bolle ook een bankeris en bolle pania garmaija hai. Ook in België is een hittecrisis mensen. Bolle dichterbij is extreme hitte. Belgische regering. बोले मंगलवार के वो कृषि सेंट्रम खोली सेगा कैसे अनपक करेगा रात के बोले कि कूलर रहे 25 ग्राद अब दैट इट अ सोनलक वार्म मींस मित्र लोग के दिन मेलखी के बोले फनवीक द हिट इज दर कोड ओरेंज गिवन और नीदरलैंड में afgelopen woensdag कोड ओरेंज रहा द वार्स्क्यूइंग ड्यूट इन ईदर गेवाल tot in donderdag, maar de kans is groot dat dit wordt verlengd, mensen. Itra garmi hai Europa mein aur aap loon bhi pani piye hue khelwaad na kariye dosto hum bhi यहां पर पानी ठंडा पानी लेकर बैठा हुआ है कि हम भी तरी से अफकूल हुई हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता तो आप लोग जानो हैं रुसलान भैया यूक्रेन के नाक में भैया नाक में और कदक काबुल है नाक में इतना प्रॉब्लम करी से जब देखो तो एके उड़ावे ओके उड़ावे है बम से दागे ड्रोन से दागे है अब यहां उल्टा चीज होइगे भैया यूक्रेन अब कितना ड्रोन उड़ावे है और रुसलान के अनफॉल करे भैया राफिनार द रे दागे त ई दागे त उ दागे है तो यहां पे बताए गए है ड्रियन 20 यूनी के बात है और बोलेगा फर्स्केलेंड रीज रुसलान में ओस रुसलान में इज द फेरकोफ ऑफ ब्रांस्टोफ अन पार्टिकुलरन अन बंधन खलेग ऑफ दी मनी विलन lokale autoriteiten voorkomen dat er gehamsterd wordt vanwege Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen en brandstoftekorten. John Rusland etra jabar teel dunia bhar mein export karat raha een van de grootste exportland raha teel ke ab ohi ke desh mein teel na hai bhaiya teel bole hai bahut kamti hai aur bole saban hamster kare omdat Russische raffinaderijen go hega Oekraïne apan drone se dak के ओके चित्रा दीजे और रूसी रफिनरीन वर्डन अल मंदर अंडर फिर खुरुमन यूक्रेन से लेकर से और फॉल्कस आंद्री मेलिक द परमानेंट vertegenwoordiger यूक्रेन के बेडे फरेनिक्ड नाची इज 40% van de totale aantal raffinaderijen in middel beschadigd. Toen bole hierdoor Rusland ke raffinaderij capaciteit jon hega flink afgenomen doordat Suriname en daardoor sommige complexen meer dan eens worden aangevallen. Toen itra jabber bhaiya ab to Rusland apan tel apre hi admik na dei pawe he. Daarnaast worden ook aanvoerroutes
स्कूटर्स फब्रास्ट ऑफ वस्तुक जहां जहां स्टेलवा समल ले जा है ओहू के उक्रेन दागे है रिसलैंड बोले है स्कीर आइलैंड द क्रिम इज द फेयर को फब्रास्ट ऑफ दारदोर फॉर लीडर स्टिल गेस्टेट एको क्रिम में वहां पे रिसलैंड ले रहा और तेल कर ओहू इन बन हो गए है और एक बारे में अन द रेखियो व्लादिमीर देन ओस्टर मॉस्को में krijgende hulpdiensten vervoerders en landbouwvoertuigen verlopen voorrang bij de voorkoop van brandstof, meldt de governor of Telegram. Jonathan Miketi kare, ook is van Teel de Win. Ik ga ik weer naar jij de Zoam. Ja, burgers hebben de oproep gekregen om zo min mogelijk autoritten te maken. Bole auto kan titelen je, regering bole Poetin ge, bole ik ga Teel hem lukken na he. Oostelijke Russische regio's is middels sprake van een brandstoftekort, waaronder in de Kazachstan grenzende regio is de verkoop van banden gelegd en is het gebruik van jerrycans verboden. Jerrycans met biedt ook het tamage tellen, jijke. 10.000 kilometer afstand komen in beeld. Volgens Kremlin woordvoerder John Hega Russische regering ke oliemaatschappijen kebole om ervoor te zorgen die constante aanvoer van brandstof blijft. Bole Hega ondertussen Oekraïne door aanvalkere Russische telpe or gaskele installatie waaronder raffinaderijen, bollehega fabrieken, jetrahega exportterminals gewoon door Oekraïne president Zelensky maakt afgelopen weekend melding van een aanval op de olieraffinaderij in de Russische regio Tumen. Om zo'n 2000 kilometer afstand van Oekraïne. Volgens president is bij die aanval gebruik gemaakt van een nieuwe type lange afstand drone. Met deze drones komen ook doelen op ruim 10.000 kilometer afstand binnen bereik. Stel ik zeg nou ook een Oekraïne banaan zeggen. Drone ook op een eigen fabriek. Ja, op de ultaatje joa hoe hega. Raffinaderij gaan. Sapke als hij dag. Or Oekraïne plata kare hai Oekraïne wil ki militaire druk joan henga bole gepaard gaat met diplomatieke druk die moet Moskou ertoe aanzetten om een einde te maken oorlog bole hem ik had karela ki Moskou joan hai Rusland ke oorlog wa ook het jij ben karek hamlo se herhaalde melding manda bij de VN gebeurt dat niet dan overweeg Kiev om zijn voorstel voor een wapenstilstand langs het gehele front al ruim een jaar op tafel ligt op बोले रुसलान बोले ना मांगे हैं तब ये हम लोग का मन ही रहेगा कि हम द्रुक करेला कि और लोग हुआ बन कर उक्रेन अंदर स्कावे दौर द इंपैक्ट फॉर मिलिटेर द्रुक ऑफ उक्रेन लाइक ओक द अमेरिकन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नीत से ऑन गान vorige week zei dat Rusland een deel van Oekraïne zou moeten sluiten voorheen was die boodschap meestal aan Kiev gericht तो ये बात है हमारी जनता कि अब सब चीजों उल्टा हुए लगल है Oekraïne juist aanval kreeg Rusland koeper en Rusland mee teelol naar hege bhaiya bole landbouwers ke voorrang hai en bole Russische brandstof tekorten als gevolg van Oekraïnse aanvallen breiden zich uit mensen तो हमारे जनता और आगे को हम अपना प्रोग्राम को लेकर और चलते हैं बढ़ाते हैं वो तो और देखो भैया मार्टिन लूथर किंग वेक में पारा क्रीक में हुआ के बड़की बन है भैया वेक लंग अफकसलोटन बड़की हुआ के पारा क्रीक के और बन है भैया एगो बड़का बड़की और बोले हैगा बेतोन ब्रिक ओवर द पारा क्रीक और जो मार्टिन लूथर किंग वेक में है अंडर हाउस हुआ हुए है और बोले बड़की बन है बोले स्वार ट्रांसपोर्ट गेल्डन अपार्ट फरकेसमात्रीक्लन और बोले उस सबके बड़की ना बोले हैगा गब्रेक मार्कन बोटर्स हाईवे के ऊके पूरा स्वास्थ्य के चाहे जाय के तेगो लंबा रूट आदमी लोग के मारे के परिगा हमारे जनता तो अभी आप लोग को और आगे के बातचीत हम बताएंगे हमारे जनता कि और करप्शन के बारे में भैया एंटी करप्शन कमिशन दू द्रेंगन अप्रूव ऑन फी
wie verplichtingen to boli jo niye kya hota hai to ye hota hai ki anti korupsi wet jo ne gohega 13 april 2026 me dringend oproep kare hega ki jo publieke functionarissen hega bole hega die op grond van de anti korupsi wet verplicht zijn een verklaring van inkomsten van vermogen van IEV in te dienen bole het jetra lantike admi he functionaris he bole verplicht hega anticorruptie wet se bole ego verklaring afleg kareke ki kaha pe tu i paisoon pahile he fee fee ke matle verklaring van inkomsten en vermogen bole hega de ACC wees erop dat de door PG vastgestelde hersteltermijn afloopt tot 16 augustus pahile te lukketje heen sepke melde kardeweke or ACC is het groot belang van de verplichting, hun wettelijke verplichtingen alsnog nakomen. Deze gevolgen kunnen onder meer bestaan een strafrechtelijke voldoening. De ik er maar niet mee verplicht is. Want ke augustus pahile sepke verklaar kareke ki kahan kahan pe or tu isepje joan pahile baate anti-corruptie wet ke baare mee te ye to accha baat hai bhaiya maar sab kuch wahan bikau hai bhai je to ke paisa hai te ee wetwa bhi tor ho jai ee to humara sirina hum ke vishwas na rahegi humare janta ab ek aurat bhaiya nikeriyanan ke baat hai nikeri me dui barani me jhagda bhail hai bhai jhagda bhail hai sanichar ke raat ke aur nasaan raha auratiya bas अपन घर में अपने आगे लगा दीस ना अंदमिया भैया औरतिया लगा दीस और ये बातचीत हुए है शनिवार के रात में निकेरी के बात है भैया एगो नीखन फिर तक यार के और बोले द खसिन फोन द फॉलीडिक इन द फ्लमन एंड फॉलीडिक इन फ्लमन वाज ऑपकनोमन और एक बार अपनी केरी के सिपाही गईल है और कहीं फने को सोल स्ट्रात है तो वहां पे ये चीज भईले भैया आगे लगल है और बतावे दुई परानी के झगड़ा में घर में आगे लगे दुई परनिया जे मोई हो जाए तब बैठ के मुड़ी पे हाथ धर के और यो की का बात भईले हम का कडल्ली बाटी और एगो रमिया के जरगे पीठी में किसी भाई अपन फुरतोई में ली गए है मुगरा में इस संतरे में और बताई गई है या खतईकन इस्लाह तो फरक्लार देते हैं वो पुलिसी दैट एम एन द ब्रांच ऑफ हेवन आंखस्कोकन और बोले एगो औरत के हिया भैया का किया बानल है और एक औरत की फोटो है जो अगिया लगाई से भाई अपन घर में अपने आगे लगाई के और तमाशा देखियो दारू पी के दोनों प्राणी तो ये बात बड़का रूफ ऊपर फाल भइल है हमारे जनता सनिचर के संजा के भइले बैरखन सूप वेख में बैरखन सूप वेख में एक जबरदस्त रूफ भइल है जहां पे देर तक दैसन एसएडी सब लीगे को ब्राउन फीस पे भाए फरदख्तन दार में मक्तन तो द पुलिस बोले है बरूफिंग भाई ने सर तीन भैया दिन में के बोले हैगा रेड लंग समेशन ऑटो हाथ स्कूटर सास ऑफ से स्कूट लिखन op een gegeven moment werd zijn voertuig ingehaald door een bromfiets met daarop twee personen die ik wat met dhire op een auto leek jat raha en ik was koude tas tange raha jo maa otra paisa raha en chitte me keko bromfiets inhaal kari se en bromfiets wa ik inhaal karke ik er tas wa leek en peel bhagal bhaiya door de plotseling al achtki schrok de automobilist waardoor de verdachten en inslaagden de tas met het geldbedrag buiten te maken Na de beroving gingen de bromfietser en zijn medepassagiers er met hoge snelheid vandoor. Beide verdachten droegen hier integrale valhelmen, waardoor hun identiteit niet kon worden vastgemaakt. Als je pahi ik hoje maar toe auto pe baate bhaiya, chalat auto ma se sab ghinch le iste kahen auto wale ke dawraile. Haur ye sab maate hamare Suriname ke hamare pyare pyare meetha meetha janta. Suriname ka news aur kuch aur deshon ka samachar
हम आप लोग के बराबर देखो सिपाही भैया सेट एक्स्ट्रा पर्सनल इन बे ऑफ खसलोतन ब्रुक पारा क्रीक में एक्स्ट्रा जो ब्रुक किया रहा हुआ एक्स्ट्रा सिपाही धरी सेगा बोले तैने जो स्पूत ऑफ लग बोले हो तो इनके इंस्पेक्टर लोन हुआ दम ब्रुक के गई ले हैं और बोले पुलिस पोस्ट एवर ऑफ कर एलकार वा नो देख बैठ स्थान उजन ब्रुक किया बन करी से और सिपाही लोन हुआ पे भैया श्री नाम में ड्रग ड्रग ये पकड़े है।

और दोस्तों, जब जब तुमको देखा है रे छलिया, ये गीत आप लोग को हमने सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। अब देखो भैया, बेना लंग से एक आदमी काम उम करके आयल की का करके आयल है, और ओकर कोई पलवार जाने की शहर में मर गए रहा। तो बोले अब हम जाई डायरेक्ट का बोले मट्टिया में। अब मट्टी अट्टी में उजाई के अपन का बोले सब कारबार करके, अब बोले अब हम फ्राई हो गए। अब हम जाई तरी एगो कैसीनो हो जाई भैया। तो एगो भैया गैल है मजे में एगो कैसीनो में, और ये कैसीनो में गैल है तो हुआ खेलत खेलत खेलत खेलत एगो बदराख जीतल है, एगो खल बदराख जीतल है। और जब जीतल है तो बड़ा खुशियाली में रमिया रहा भाई, खूब खुशियाली में रहा। न तिल तू जिले बाट एगो 50 बरिस के आदमी बा। तो ये रमिया बड़ा मोह से गैल है, तो बोले अब हम जाई तरी कुछ खाओ ली हम। तो गैल है एक दरी कुछ खा तो उतरा भैया। तो हुआ भेटा नहीं एगो औरत के, और वो औरतिया हुए पे भैया हौसल करत रहा। जाने कौन हौसल हुआ तो हमें हौसल हौसल कर भैया रमिया के फंसाई से। तो रमिया के बोले अच्छा ठीक है सब कुछ मोई हुई गया। रमिया दारू वाली भी पी से भाए। तो अब ये के ले के गए है अपन दूसरा कमुआ करे, तुम समझ गए ना। पलटन तिवारी वैक में एगो पेंशन है और गैल है पेंशनवा में। अदमिया टैक्सी शोफेर है, टैक्सी शोफेरवा 50 बरिस के अदमिया के और वो औरतिया के ले गए एगो पेंशन में पलटन तिवारी वैक में। तब दोनों में भीतर रहा थे। ये नमिया इतना गढ़ू काम करी से भाई की सूत गए वही पेंशन में सूद गए, वही पेंशन में ही भैया सूद गए और लगाए भी रहा। बस ये औरतिया का करी से जितना पैसा ही जीते फीते रहा। एकर पजामा टांगल रहा भाई, जेस पजामा रहा और एगो ताश रहा सब वही में। ओकर का बोले है गाइडेंसी टेज कार्त रहा और खेल बद्राख रहा एगो बैगताश में और दोस्तस कार्त रहा मोबाइल टेलीफोन रहा सोना के केतीरा सब लेके छोड़ी पेल भागल भाई, पेल भागल है। तो ये आदमी ये जगल है तो देखे के पजामुए ना है भाई, पजामा मके जितना चीज सब इसे चुरा ले गई औरतिया। तो इस गनमी गल है नानिश करी से, तस्कोतु गल है पेंशनवा में पलटन तिवारी वैक में। तो के बता इसकी दुई मिला ऐसे आयला ऐसा ऐसे समय पे। तो पेंशन वन वाला सब के कहते ही नंबर हुआ लिखा है कि कौन ओ तो आवे कौन ओ तो जा है। तो कहते हीकन के मुताबिक तो सिपाही जाई के और टैक्सी शोफेरवा के पकड़ी से वहाँ टैक्सी शोफेरवा और छोड़िया सम वैरक करत रहा और जाई के पकड़ी से गा का बोलेगा छोड़िया के और टैक्सी शोफेरवा के कैंती के नहीं से पाई से भैया। और बतावे आदमी त्रासी फन पेंशन ब्लीक दा द कैंती के फन टैक्सी वार मेरे फरदख्त है ट्रेन फलित ओवर इन को मैं टैक्सी दी है तुई ताल एरदर ना रे पेंशन हाथ खबराख द स्पोर लेडर द पुलिस ze uiteindelijk naar de taxichauffeur. Tijdens onderzoek wist de politie een deel van de buik terug te vinden. Mensen, ouro ouro tiake, ouro ik heb paige, maar ik zon wang ik het tia het ja. Abena paise, ik er bare me li forno kies paai. 52-jarige taxichauffeur, ouro 25-jarige commerciële sekswerkers zijn aangehouden op verdenking van beroving in een pensioen in de resort li forno. De twee zouden een man hebben besloten bestolen van onder meer een groot geldbedrag en een mobiele telefoon en ziranen. Toe illa turpe gaila bhaiya kabule gok gaila gok kare na bij de kruising van Latourweg en Martin Luther Kingweg mee, waar hij volgens eigen zeggen aanzienlijk geldbedrag won mensen. भैया लतूर फतूर तो हम लोग न जाइला वही बेनालान के जुगा रहा हुई और वो गए भैया। तो कर संगे ई दशा हुआ पे भैल है
यानी कि लातूर पे। अब देखो भैया मोंगो के दो सेंतन, मोंगो टापू के दो सेंतर भैया, हको मिनी तेर दन बसलौतक करे डायरेक्ट बारात में जाएंगे। और बोले जब लेक हम लोग के पैसा ना आई भीतर स्कूल के ये फ्राउ में इस तलों बोले हम लोग काम पे ना जाबे। और बोले देखा शाम लोग अंदर वे इस बोन बोले वर्ष क्यों करे हेगा, बोले एग्जाम वेरक्साम हिडन एन खफार कॉम एन एसन दर रखेरिंग एन मिनिस्ट्री ऑनरवेज वेतस्कपन एन कुलतीर ओपरस्टैंड वर्गुडिंग उइटलिक दिस वीक बतालन। बोली हफ्ता हम लोग का पैसा ना दिए तब बोले हम लोग ना जाबे, और समय पे लड़कन के एग्जाम के प्रयुदय है और एग्जाम बोले ना हुई पर बहुत बड़का हानि है। और बोले हेगा बोंदन बोले आप स्प्रेक करे हेगा एक्सिमिना तोरन के दो सेंटर ने मंगो टापू के कि यूनि में तो इधर से फॉर लीडर सौदन से इन उत्पताल। और बोले से स्टेलन एक्टर दा दे से अस्प्राक नीत इस फॉर लीडर इस नाह कोमन। और इची जुआ जब जब इ रखे रंगवा बैठे एनडीपी के भैया तब ये फ्राउ में स्टेलन स्टाकिंग करे है, तो बोट वाल स्टाकिंग करे है, तो बिस ओनर स्टाकिंग करे है, सब कोई अपन अपन पैसा ना पावे है, तो सबके करे परे मेन से द बोंदन फुरन आन टू अकितो आओ फीना उकाबर कोप क्राफ वर्सटर्किंग के पैसा ना पावे है। दैट इज टॉक erg mensen. Mensen moeten achter hun eigen geld gaan die ze gewerkt hebben of waarvoor ze recht hebben. De bonden voeren aan dat tot nu toe slechts één deel van de gecommuniteerden in het betalingsproces is meegenomen. Op bolle ikarbarem onderwijs bonden bolle volske BVL also door HOS en VWP eisen dat uiterlijk 26 juni se pahile tjahin sepke paise achterstallige betaling paise tjahin पाई के। और बोले हेगा दो सेंडर फ्रॉम मोंगो टापू के बातचीत है जो मोंगो में काम करे मोंगो टापू में भैया, तो ये बात है किस तकिंग वहाँ के चीज हुआ। और बोले फिर आवेले इतना गर्म में भैया कि सहारा के जो स्टॉफ है सर नाम बुड़ल है और यूरोपा भर में गर्मी है। सोचो भैया फो बोले है फर वाक करे है ओवर वीकन वारम एंड द्रोह बोले सहारा के शांति पुरुर के यहाँ आवे है मैक्सिमम टेम्परेचर तुसे 32-34 सेल्सियस। द कॉम्बिनेशन फन हुगे टेम्परेचरन एंड हुगे लुखफोक्टेटहेट साल हेट आंसीलिक वार्मन आनफुलन मेंसे। तो ये बात है गर्मी पाकिस्तान उधर भैया अलार्म करी से अपरे के अलार्म करी से पाकिस्तान कौन ची खातीन बोले फरमुद बोले मुखलग बोले फिर द अख्तर इन फोलखंड यार में बोले जबर बरखा पड़सीगा ओवर स्ट्रूमिंग हुई देसुआ में बोले रंप बहेसिंग ऑथोरिटेटन अतवार के अलार्म करी से करवाने में कि का बोले पाकिस्तान में उतना बड़का ओवर स्ट्रूमिंग हुई बोले बहुत बड़का ऋषि को है बोले केक बोले मैंने नाम कबीदन हुंसा एंड सर सर सर स्कार्डू ब बेरखतअख्तख खिलित बाल्टिस्तान इन अ प्रोविंसी। और बोले वार्डन आज मीस क्वेस्ट बार बस्काउट तो पाकिस्तान के लोग जो वहां पे है सबके रखेलिंग अलर्ट करी से। और बोले हेगा 2022 में इतना बड़का ओवरस्ट्रोमिंग भइल है जहाँ पे 1700 आदमी मरल हाँ एंड मेरन देर तक मिलियनन ऑन हिंदन हाँ। और बोले टेम्परेचर बतावे है इतना जबर चढ़ी 48.5 ग्राद सेल्सियस हो जाएगा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान बोले हेस्फेस ऑनगेर 13,000 ग्लेशियर से होस्ट अंतर बैठन दे पोल खबीदन। और बोले ऑनगेर 7.1 मिलियन मेंशन वोनन इन द नाबे ऑनगेर मेंशन। और यहाँ पर बहुत बहुत लंबा चौड़ा लिखल है तो जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ है आप जरूर अपने परिवार से वहाँ कॉन्टैक्ट करना। द राम 2022 में बोले हैगा 11 मिलियर्ड डॉलर के हुआ बोले तू सेकिंग रहा अन हेल्प ओम दो नॉर कॉन्फ्रेंसी इन जिनीव इन 2023 वाज मेड यू 2005 एंड स्लेख ऑनगेर 4.5 मिलियर्ड डॉलर के बातचीत उतरा हुआ हुई भैया। ये है पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ के बारे में आपको हम बताते हैं।
तालिबान तुलन जानो है, तालिबान एगो बड़का दिल्ली खाद से लेके जा है ब्रुसेल बेल्जियम में भैया एगो ओवरलैग है EU से, बोले हैगा मेल्डन मेर्डन मीडिया डिस्टन यूरोपीय कमिशन बोले है तालिबान के बोले हैगा ऑफ आमतलक निवो अन गस्प्रेक साल फोरन बोले कान है बसुक नोग नीत बेवेसिगन बेल्जियम माकते सो मार्क बकेन करी से कि 5 eendaagse visa had afgeven voor een delegatie bole paantje roetjes op ke visum khali milal he ego delegatie leike bole awe ke au bole hega en Brussel me bole commissie is al langer in gesprek Afghanistanse regime se bole mogelijke terugkeer van de asielzoekers doen asielzoekers hega bole us op ke terug jai ke bole een delegatie van dagelijke bestuur van de EU reizen daarvoor begin dit jaar ook af naar Afghanistan, bole hega Europese landen, bole Europese parlementen zijn zeer kritisch op een bezoek van de vertegenwoordiger van de vrede regime van Europa parlementariër. O bole hega D66 noemt hem bezoek een klap in het gezicht en een nederlaag voor onderwaarden verantwoordelijke economisarissen. O bole ze van namange het Talibanke, dus toe, maar ja, goed. Ze komen wel naar België, Brussel mee. तो हमारी जनता ये सब बात एक बयार द औरत भैया सुरिनाम में ओके सब हंसे इवन से इवन तक या रखे और ओके ये फरसोरख कर तरह तू इन दर तक या रख फरसोर कर सब के इस सब घर में रांध के कोलो निस्तन वेख में और रूफ ओवर फाल भैले दोनों के छोड़ी पिस्तौल दिखाई के और से इवन से इवन तक या रख बयार द और ओके फरसोर कर के सब लूट के चल गए भैया यहां बताए दे criminelen gingen er uiteindelijk vandoor met de portemonnee en 2 paar oorbellen. Na de roof verlieten zij woning en verdwenen in onbekende richting. Toen zelf bejaarde kesep gewoon tjoor na tjoorde bija en dat is een Suriname mensen waar dit soort dingen is wel gebeurd. Hoofdwijs olieinkomsten zijn geen garantie voor welvaart. Hier hega hamelijke hoofdwijk door haar. O hardem demonstreer kert haar. Curtis hoofdwijk bole hega. Aur u op een pro met ze mee niet kerge. Dosto aapke bataye he. Ab hier bole actuele maatschappelijke en politieke situatie bole he. Bole telwa joon hamelijke nikerige eker matem na ki deswa. Hamelijke probleem met ze nikar dei. Bole olieinkomsten geen automatische garantie voor welvaart. Bolle hega een belangrijk onderdeel van een gesprek ging over de verwachte ontwikkeling van Surinaamse olieindustrie. De sector wordt door velen gezien als een mogelijke bolle game changer voor de Surinaamse economie, maar hoofdweg waarschuwt voor te veel en effortie. Dat is een moeilijk woord gebruiker in Nikar, John Hamare Jantabi, naast Samajpaye, waarvan een makkelijke taal ook makkelijk kunnen zijn. Oh, is ze bij Poetje, een moeilijk taal, dan moeten ze in de woordenboek gaan zoeken, mensen, maar dat is weer iets anders. Van de Xerox Weker waren we bolen. Ondanks olie en gas zullen we zonder lokaal continu beleid straatarm blijven. Bolen hamlo straatarm rabe. De Kogayana moet ratel niet kreeg. Maar toch gewoon op een garib taai. Je bent toch geen hamari janta. En is op Suriname. Ik heb een agore. Ik heb telwa niet kreeg. Natuurlijk. Us op soche. Ik heb een mooi hoi. Ik heb de Kobaya. Sant Lauren. Aplon Jane. Albinam to. Veerboot. Habara hoe he. En hoe ik een nieuwe. फिर बोट 5 सितंबर में शुरू करी मोई से चले के और बोले हैगा जोन हबड़ा हुए है साउथ लॉरेंस ने अने बोले हैगा अल्बिना से फलोप कंपन मैंने एरेस्ट का बपेर की और एको हैडो का फिर बोट हैगा लाका ब्रिले 18 यूनिम बैठन गब्रेक हुई गये है आज को फॉलो फन एंड इफेक्ट ऑन द हिड्रोलिसे पोम तेलक तगलेकरटेन हैव द सुरिनाम्स हाफन अथॉरिटी एंड फास्ट gesteld dat de drijvende aanlegsteker aan de zijde van Albina zodanig is verslechterd dat deze niet langer veilig kan worden gebruikt. Hierdoor zijn de reguliere afvaarden voorlopig opgeschort mensen. Op pas september met Nauka Botia Chaliga. Ik erbari mee hoop is gevestigd op de tweede veerboot.
onderhoud. Malani die momenteel onderhoud en technische voorbereiding ondergaan. Voorafgaan aan de ingebruikname zal eerst een testfase van ongeveer een maand plaatsvinden. De officiële gebruiksname staat gepland begin september mee. Hamari, Piari, Piari, Mita, Mita, Janta. Kelie, je baant hem aapko batante hem. Saant Mila ke arrestatie pakdi se drugs ke baare mein. Saant Mila ke pakdi se bhaiya narcotica brigade bolega Saant go arrestance team opgeroepen voor verhoor verband met mogelijke onregelmatigheden. 82 kilo cocaïne, 2 voertuigen. Betrokken agenten worden verdacht van deelname aan criminele organisatie. Aur Saant Mila ke pakdi se jama 3 go sipahi be hain. Advocaat Vera bevestigt desgevraagd aan de redactie van de Waterkant. Bolle he, het zevental voorhoor is aangehouden. Sipahi pakdi se sipahi ke 3 go sipahi pakraan he verzekerd gesteld. Eveneens verdenken van overtreding van verdovende middelen. Deelname te sipahi sipahi ke pakdi se bhaiya. To hamare Suriname mein ye baat hi hai. Bala Argentinië bhaiya. Aur een van de hieraan pe bataye gaye hai Messi ke bare mein. Weka top scorer hega aller tijden met 17 treffer. Aur Messi bhaiya abhi tak hega waarvan Ronaldo is ook gezaakt. Lionel Messi heeft een geschiedenis geschreven mensen. Argentijnster speler maakte in de groepwedstrijd tegen Oostenrijk zijn 17e 18e VK doelpunt. Is daarmee alleen recordhouder als topscorer aller tijden op het mondiale eindtoernooi. De Messi is nog steeds de sterkste man om te scoren mensen. To je baat ego milake snaipa bhaiya kono snaipa hai sipahiyo ke khojat raha oke pakdi se yahan pe dikhawe hai 36 jarig sinango be bekend als snaipa somar ke sanja ke pakdi se saman mein 2 advocaten aangemeld bij de jeugdpolitie Suriname. Sociale media figuur werd al enkele dagen door de politie gezocht in zedenzaken. Ego minderjarige larkieke bare mee. Na de aanhelding werd hij verhoord en voorgeleid in overleg met de Surinaamse O.

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आज आप सबके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई हूं जो धर्मेंद्र जी के ऊपर है।

सुनने वालों, आप सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक इतने महान कलाकार थे कि मैंने सोचा आज उन्हीं की जीवनी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाऊं।

तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ सुनने वालों। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। वह 8 दिसंबर 1935 फगवाड़ा कपूरथला जिला में पैदा हुए। एक छोटे से गांव सानेवाल में पैदा हुए।

देवेंद्र जी ने लुधियाना के लालटन कला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद वह एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुँचे।

धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक अभिनेता थे और इनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल भी अभिनेता हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी जिनमें शोले, धर्मात्मा, लोफर, यादों की बारात, फूल और पत्थर, जंजीर, बर्निंग ट्रेन, गुलामी, आग ही आग, तहलका, यमला पगला दीवाना जैसी कई हिट फिल्में दी जो एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है और उन्होंने ही मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। और उनकी अच्छी फिल्मों में चुपके चुपके, सत्यकाम, हकीकत, यादों की बारात भी शामिल है।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म थी ब्लैकमेल, और इसमें धर्मेंद्र जी और राखी गुलजार ने काम किया था। उस टाइम पे ये फिल्म चली और इसका गाना भी खूब चले, और धर्मेंद्र जी एक चॉकलेटी हीरो कहलाए। सब लड़कियाँ उनकी इतनी दीवानी हो गई क्योंकि वो इतने खूबसूरत लगते थे।

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा पर 6 दशक तक राज किया। 60 सालों के भीतर उन्होंने 300 से अधिक फिल्में की। शुरुआत में रोमांटिक हीरो तो फिर एक्शन हीरो के रूप में भी वे खूब सफल हुए।

0: की कैरियर की सबसे हिट और हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी फिल्म शोले में उनका वीरू का रोल आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की सुनने वालों कि उसके डायलॉग आज भी लोगों को याद आते हैं।
1: जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
2: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
3: वो
4: अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
1: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय।
2: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
1: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
5: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो?
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो, तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया? देखो,
1: मेरा दिल भर चुका।
5: देखा, देखा तुमने?
6: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
5: क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो
1: इसलिए मैं जानते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
2: कैसी मुसीबतें आएंगी?
1: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग and पीसिंग।
2: अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
5: अरे कैसे हाँ कर दूँ बिना नाथ जी?
1: अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जानते करूंगा। एक, दो, तीन।
5: मौसी, मौसी हाँ कह दो ना।
7: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
5: अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
7: हाँ कह दो मौसी।
5: जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
2: मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
1: मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धनो बसंती से शादी करनी है। बसंती से?
5: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
1: अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा।
0: सुनने वालों, अभी आपने ये जो डायलॉग सुना, ये फिल्म शोले से लिया गया, और ये मौसी वाला डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज जब भी शोले का नाम लिया जाता है तो लोग इस डायलॉग को खूब पसंद करते हैं। सुनने वालों, अब मैं आगे चलती हूँ। सुनने वालों, धर्मेंद्र को किस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया? 1960 के दशक में वह दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार के बाद तीसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। उन्होंने उस दशक में 15 हिट फिल्में दी और 25 सफल रहीं, जिसमें फूल और पत्थर धर्मेंद्र जी की सुपरस्टार बना दिया।

हरमिंदर जी ही मैन के नाम से मशहूर हुए। उन्हें पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1964 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। यह अरेंज मैरिज थी।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत।

धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं, जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से ईशा देओल और आहाना देओल हैं। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अभिनेता हैं, जबकि बेटियां विजेता, अजीता, आहना फिल्मों से दूर रहती हैं। 1 बेटी ईशा देओल फिल्मों में काम करती थी।

धर्मेंद्र जी ने 1980 में जब हेमा मालिनी से शादी की तब वो शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी जिनसे 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उन दिनों ऐसी अफवाहें फैली कि एक्टर ने इस्लाम धर्म अपना कर हेमा जी से निकाह कर लिया।

बॉलीवुड के एक्शन किंग के नाम से मशहूर अभिनेता निर्माता धर्मेंद्र ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जो 1960 में बनी थी उससे की। इसके बाद वह फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका में नजर आए।

धर्मेंद्र जी की कुछ अन्य फिल्में हैं अनपढ़, जिसमें उन्होंने माला सिन्हा, बलराज सहनी और बिंदु जी के साथ काम किया,

सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि उस ज़माने में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत हिट हुई और उनकी फिल्में भी खूब हिट हुई, जैसे शोले, आसपास, सीता और गीता, जो भी उनकी फिल्म आती, ड्रीम गर्ल, चरस, इन सब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और वो सब फिल्में हिट साबित हुई सुनने वालों।

उस समय धर्मेंद्र जी की जोड़ी सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं, राखी गुलजार, आशा पारेख, अनीता राज और भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ हिट हुई, और सबसे पहले तो उनकी फिल्म मीना कुमारी जी के साथ बहुत हिट हुई थी। धर्मेंद्र जी ने अगर शुरू में बहुत सारी हिट फिल्में दी तो आखिर भी उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी। जैसे 1990 से 1992 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहराम, तहलका शामिल है, जो एक मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी हिट फिल्में साबित हुईं।

धर्मेंद्र के एक भाई भी थे और वो उन्हीं की तरह एक्टर थे। धर्मेंद्र के भाई का नाम अजय सिंह देओल था और उन्हीं के बेटे हैं अभय देओल, वो भी फिल्मी एक्टर।

सुनने वालों, ये जो अभी आपने गीत सुना ये फिल्म दो चोर से लिया गया। इसमें धर्मेंद्र जी और तनुजा ने काम किया। धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है 21, जो एक वार ड्रामा है और जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मेंद्र जी का निधन फिल्म की रिलीज से पहले ही हो गया और वो इस फिल्म को नहीं देख पाए। सुनने वालों,

अपने निधन से पहले धर्मेंद्र जी अपने फार्म हाउस में रहते थे सुनने वालों, और वहीं पे वो थोड़ी खेती बाड़ी करते और ताज़ी ताज़ी फल सब्जियां उगाते और उसी को ज़्यादातर वो उपयोग में लाते थे। अब बॉम्बे वाले घर में वो थोड़ा कमती रहते थे क्योंकि फार्म हाउस में खुली हवा, खुला वातावरण उनको काफ़ी पसंद आता था सुनने वालों।

फिल्म यमला पगला दीवाना 2011 में प्रदर्शित हिंदी हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने काम किया। सुनने वालों, धर्मेंद्र जी ने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया। 1990 के दशक में उनको एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसी भूमिका में उनकी पहली फिल्म थी सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें उन्होंने सलमान खान, काजोल और अरबाज खान के साथ काम किया।

उनकी अन्य फिल्में हैं कैसे कहूँ के प्यार है, किस किस की किस्मत, लाइफ इन मेट्रो, जॉनी, गद्दार। 2023 में उनकी फिल्म आई करण जौहर की रॉकी और रानी, जिसमें उन्होंने शबाना आज़मी जी के साथ काम किया।

धर्मेंद्र जी ने हिंदी के अलावा पंजाबी और बंगला फिल्म में भी काम किया है। सुनने वालों, राजनीतिक, धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। धर्मेंद्र जी ने फिल्मों का निर्माण भी किया। सुनने वालों, 1983 में धर्मेंद्र जी ने विजेता फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसका उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम पर रखा। 1983 में रिलीज़ हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को मुख्य भूमिका में लॉन्च किया। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी देओल ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसे संपूर्ण मनोरंजक प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1995 में धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लॉन्च करने के लिए बरसात फिल्म का निर्माण किया, जो उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज तक यह पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें नए कलाकारों को लिया गया था।

सुनने वालों, अभी मैंने आप सबको थोड़ा सा धर्मेंद्र जी के बारे में बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे फिर अगली बार कुछ और बताने की कोशिश करूँगी सुनने वालों।

जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: Wiewan, wanneer is deze film, want je zei net 2003 volgens mij, hè? Enig idee welke datum hij, je release datum, wanneer is dat geweest?
1: 28 november
0: 2003. 28 november 2003. Ja, je hebt hem nog een, je zonder zaagiet, je... कलहुना हो के इंस्ट्रूमेंटल से कार्यक्रम को चलाया जाता है इसमें इन्वेस्ट कितना किया गया विवान
1: रोंड volgens mij 30 करोड़ zoiets
0: रोंड 30 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया गया और एक फिल्म बनाया गया है जो हिंदी में निकाला गया ना
1: या क्लब
0: तो इसी फिल्म से कोई और गीत अभी आप चुन करके रखने वाले हैं हमारे सुनने वालों के लिए सुनो वालो विवान जो और भी संदेश अभी बॉलीवुड के अंतर्गत में हम सबको सुनाने वाले हैं

0: विमान जब देखा जाए कि मैं कल हो ना हो में आक्तोर्स वी वार द आक्तोर्स दी अब देखनों में जो अपन कला से प्रदर्शन दिए है कल हो ना हो में
1: नाउ यू हैव द थ्री हॉस्टएक्टर्स दैट्स शाहरुख खान सैफ अली खान एंड प्रीति सिंटा एंड यू हैव टू हैव फॉर सपोर्टिंग एक्टर्स बिफोर जया बच्चन सुषमा सेठ रीमा लागू एंड नोग हैव फॉर अंदर
0: अभी जब देखा जाए विवान तो इसमें एक आउट एक्टर भी सहयोग दिए थे दारा सिंह
1: या क्रॉप
0: हैव यू वेल्स फिल्म्स फ्रॉम हिम गेसीन
1: या वेल एंस हैव फ्रूगर
0: हेल फ्रूगर और आपको शायद पता नहीं होगा जब रामानंद सागर ने रामायण जब बनाए थे तो दारा सिंह का रोल उसमें मिला था जो जाकर के अल्स हनुमान हैव यू दी वेल्स गेसीन
1: या मैं नहीं फॉलोइड
0: नहीं फॉलोइड और ऐसा हुआ कि बहुत साल पहले इन द यार बखिन यार सुइफंतक की बात है तो सूरीनाम भी दारा सिंह गए थे अल्स वॉर्स्टलार सूरीनाम में भी हम लोग के हिंदू जो हमारे परिवार होते थे कुछ जो पहले शौक होता था वो लोग का वॉर्स्टल करेगा कुश्ती कहते हैं
1: yeah.
0: तो दारा सिंह भी गए थे सूरीनाम में और वॉर्स्टल के अपना झलक दिखाए थे और इसमें भी दारा सिंह भी अपना और कला से प्रदर्शन दिए कोई व्हाट वाज द रोल फॉर दारा सिंह इन दिस फिल्म
1: इन दिस फिल्म वाज हाय द ब्यूरमैन फॉर प्रीति सिंटा एंड फैमिलीलिड फॉर शाहरुख खान एंड शाहरुख खान कम्स दिस इन इट हाउस फॉर दारा सिंह उम दार टू लोशेरे
0: वी वांट नोग एन फ्राग हियर Waar hebben ze deze film opgenomen? Want het is een Dharma production, hè? Of een Yash Raj?
1: Dharma production.
0: Dharma production. Or de film is opgenomen in India zelf? Of is dat een foreign mejaker ke liye hai?
1: Nee, de film is voornamelijk voor het grootste deel in New York gefilmd.
0: In New York gefilmd.
1: Ja. Het speelt zich ook af in New York. Dus vandaar dat heel de film in New York is gefilmd.
0: Dan zou je vast wel nog een liedje hebben van die film die zeg maar opgenomen is in New York.
1: Ja, zeker. Dan gaan we nu luisteren naar Mahiwe van Kolohanaho.

थ्री दर्शन थ्री में बनाया गया कल होना हो, एक फिल्म जो करण जौहर ने और बनाए, एक फिल्म जिसे हम सालों साल हमारे दिल में बसे रहेंगे। मैं यहाँ तक आपके साथ जुड़े रहे, हमारे साथ देने वाले विवान भी, और आपको हार्दिक से धन्यवाद देते हुए नमस्कार।

0: भाई यूसुफ जी, कभी लेफ्ट कभी राइट आप चल रहे हैं, ऐसा क्यों आप इस बार ऐसा करते हो?
1: इंसान कैसे चले क्या पड़ेगा, सोझा ना चल पाइए।
0: सोझा ना चल पाओगे
1: जी? ना
0: बिल्कुल ना,
1: कभी लेंग्स कभी रेक्स,
0: कभी लेफ्ट कभी राइट।
1: वही गाना में सुना दे से, चल बेटा लेफ्ट चल बेटा राइट।
0: सुनने वालों, ये गीत पे थोड़ा से ध्यान देना, क्योंकि ये हमारे यूसुफ जी का ओपनिंग्स नंबर होते हैं। और जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है ना।

0: तो कभी लेफ्ट तो कभी राइट होता है, यही जीवन का और संदेश है। हमारे साथ हमारे भाई यूसुफ जी, जो इसके बारे में और कुछ सुनाने वाले हैं जरूर। यूसुफ भाई जी, ये फिल्म का नाम दो दिल का दास्तान, दिलों का दास्तान है ना?
1: और दो दिलों का दास्तान,
0: तो ये पुराना फिल्म और अनहेल और फिल्म जिसमें बड़ा संदेश है। भाई यूसुफ जी, पहले के समय पे जैसे कि आप बात कर रहे थे कि बायोस्कोप जो होते थे सूरीनाम में ना,
1: जी हाँ,
0: मेरे ख्याल से बहिन यार सस्तक की फैफ्तक से और वहाँ बायोस्कोप होने लगे थे,
1: जी हाँ।
0: और वहाँ पर भले ये बताओ कि कौन पहला फिल्म साइट वहाँ चलाया गया?
1: पहला फिल्म जो चला सूरीनाम में,
0: जी, यानी खास करके हिंदुस्तानी फिल्म,
1: हिंदुस्तानी फिल्म वो रहा ना द पारल के ओपनिंग फिल्म रहा, जो फिल्म मदर इंडिया, वो हमने देख लिया, हम तो बहुत छोटा
0: था। द पारल के ओपनिंग फिल्म होते थे
1: मदर इंडिया,
0: और ये इन द यार बीच बखेन यार फाइव तक के, द पारल जो कहाँ पर रहता था?
1: वानिकास्त्रात
0: ऑफ द भोग, वहाँ जहाँ
1: वाटर
0: लाइडिंग के तोरण और उस तरफ थे। पर हमारे साथ शांता जी बैठे हुए, और बाद में बायोस्कोप के सिवा एक ओपलुक थिएटर बन गया था जहाँ पर शांता जी भी शायद और वहाँ उसके बारे में और बता सकते। शांता जी, क्या वो मेरे ख्याल से अब नहीं है ना?
1: अब ना है वो,
0: जो ओपलुक बायोस्कोप बनाया गया था। तो वो कौन साल में बनाया गया आपको पता है? मेरे ख्याल से इन द यार सैफन तक एन तख तक,
1: ना उसे आगे रहा,
0: उससे पहले अख्तर नहीं, इतना पुरान
1: तो,
0: जो
1: तो लेके चल जाओ भीतर, बड़का पर्दा है,
0: बड़का पर्दा पे
1: नहीं बता, और अफलाइदेन ढेर ना रहा है हम लोग के हिंदुस्तानी के,
0: अफलाइदेन ढेर ना,
1: हफ्ता भर काम करो, वीकेंड चल जाओ फिल्म को, चल जाता रहा कोला क्रेक बॉस फीफा कर रहा निकेरी को, चल जाए को कमवेन को शर्मक्का।
0: देखो जो हम लोग तनी से और बड़ा होने लगे तो हम लोग का हर हफ्ता कभी फुटबॉल हिया तो फुटबॉल वहाँ, वो उसमें हम लगे रहते थे।
1: हाँ, फुटबॉल में भी ज़्यादा हम लोग हिंदुस्तानी लोग ढेर भी करी से ना।
0: और ये जो बायोस्कोप है भाई यूसुफ जी, इसमें आपको ज़्यादा जानकारी, क्योंकि वीडियो जो बाद में जो घर घर पे वीडियो किनाने लगा तो वो बखेन यार ताख्तक के बात है ना?
1: हमें जहाँ लग पता है सूरीनाम में
0: बखेन यार ताख्तक एंड यार सैफन तक बखेन यार ताख्तक,
1: तब पहले इंडस्ट्री जान ले जो तियातर रहा उस सब तने कमती हो लगल आदमी लोग, अब घरे घर फिल्म अपन ताके तना जाए तियातर में देखे,
0: तो तियातर नहीं जाते थे देखने को। कि कुछ आपके ओर से जब रखना है बायोस्कोप के बारे में जो सूरीनाम में हुए है और उसके बारे में जानकारी है, तो जरूर आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियो का और टेलीफोन नंबर जो यूसुफ जी आपको सुनाने वाले हैं,
1: टेलीफोन नंबर है 07-365-22-47। वो इस वो नंबर है जो इस साइट है
0: इस समय जो हमारे पुराना नंबर है ना यूसुफ जी, जो फिर से दोबारा चालू हो गए हैं,
1: या एंड द अंदर नंबर द आउट नंबर इज ऑल इन वर्क एंड दैट इज 07-36-22-077। और एक वन नंबर जो है वो आंखसलोते है, आएगा आएगा हम लोग के मिल गए हम, अब आंखसलोते ना है दस काबल आज भी हां लिख दोनों पुराना नंबर हो जाएगा हम लोग के,
0: तो ये भी एक बढ़िया बात है। नया स्टूडियो ना जो पुराना नंबर होते थे फिर हम लोग का फिर दोबारा और चालू हो जाएगा। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और अभी और भी संदेश हमारे भाई यूसुफ जी हम सबको सुनाने वाले हैं।

0: यूसुफ भाई, अभी आपने कुछ कह रहे थे कि ये एक्टर का क्या नाम है?
1: भगवान।
0: और इनका फेवरेट कुछ इसके बारे में आप कह रहे थे?
1: ये एकर डांस जोन रहा पहले, वो अमिताभ बच्चन ढेर कॉपियर करी से उसका स्टाइल के डांस।
0: तो अगर आप अमिताभ बच्चन के कहते तो मुझे कुछ ख्याल आ गया। अमिताभ बच्चन जब 80 साल का उसका हैप्पी बर्थडे मनाया गया तो कौन बनेगा करोड़पति में, शायद आप देखे होंगे?
1: जी
0: नहीं देखा।
1: ना, ना, ना।
0: पर जो देखे होंगे तो उसके लिए स्पेशल एक और कलाकार आए थे गाने के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो बंगाल से बिलोंग होते हैं और उनके लिए बंगाल में सबसे और जो बेस्ट सॉन्गर है कहलाते हैं, उसका नाम कहा जाता है श्री गौतम दास बाउल जी। अगर हम उसके बारे में एक छोटा सा सॉन्ग उसका मैं रख देता हूँ।

0: सुनने वालों, जो बड़ा कलाकार है, जो जिन्होंने और बड़े बड़े फिल्मों में भी काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, इनकी एक फिल्म आ रही है सुजाक्षी सेना की लुटेरे, उसमें भी इन्होंने गाना गाया और मिर्ची अवार्ड में भी गाना गाया है, और एक इंडियन आइडल प्रोग्राम आता है उसमें भी इन्होंने गाने गाए हैं।
0: भाई जो हमारे यूसुफ जी है, और भी फिल्म के बारे में और भी कुछ संदेश रखने वाले यूसुफ जी, तो ये बताइए कि परमारिबो एक छोटा सा शहर ना?
2: Ja, Hofstad rap.
0: Hofstad.
2: Van Suriname met ongeveer 80 tot 90.000 mensen.
0: 80 tot 90.000 mensen. Of bioscoop raal hoi, dat is wel ik.
2: Arre, bara bioscoop raal. Sap full house raal.
0: Sap full house.
2: Zoek ze niet jaren het waar.
0: Ik bioscoop bij Rust en Vredestraat meer uit dit heen.
2: Waar een familie Harkisun keer raal, waar een empire.
0: Empire.
2: Yeah.
0: और एक बियोस्कोप हमें ख्याल है, मैं अभी स्कूल जाते थे तो यहाँ दोमनी स्त्रात जहाँ पर एक लकड़ी का
2: बेलफ्यू,
0: वो बेलफ्यू रहा।
2: जी हाँ, वो बेलफ्यू, वो रहा एमिल ला फेंटा के, वो के चार को तैयार रहा।
0: और एक जो आपने क्लाइन सर मक्का स्त्रात में,
2: वो रहा फैमिली मानी चंद के जसोदरा।
0: जसोदरा,
2: जसोदरा।
0: ऐसे ऐसे भी

0: यहाँ भी। शांता जी, आपको कुछ ख्याल आता होगा कौन सा बायोस्कोप में आप गए वहाँ पहले के समय पे? कंडाल
1: कंडाल में रहा,
0: में भी?
1: कंडाल में थिएटर शांति,
2: शांति वॉज फन। ओ या
1: कंडाल में,
2: हाँ शांति रहे वो, वो तो
1: 10 नंबर की सरह 10 पे रहा थिएटर शांति। तो उस थिएटर में हम गए, सबसे पहला फिल्म अपन जीवन में स्टार्ट की है हाथी मेरा साथी से।
0: हाथी मेरा साथी से
1: पहला फिल्म जो हमने देखी बायोस्कोप में, थिएटर बायोस्कोप में, हाँ हाथी मेरा साथी,
2: रजत खन्ना,
1: हाँ एक हिट फिल्म
2: था, फिल्म रहा, ओकर सब बैनर फिल्म हिट रहा था।
1: रजत खन्ना के लगातार उस सुपरस्टार रहा ना, सबसे पहला सुपरस्टार वही था फिल्म इंडस्ट्री में। और क्योंकि उसका 14 या 15 फिल्म लगातार जो हिट हुआ है, 15 फिल्म लगातार अख्तर का लगातार जो बने गए हिट होते आया, और पहला और आखिरी ओकर बराबर आज तक कोई ना, सुपर सुपरस्टार है।
3: हम मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ शांता जी, उससे पहले राजेंद्र कुमार जी जुबली कुमार कहलाए, उनकी फिल्में जुबली होती थी, सिल्वर जुबली।
1: 15 फिल्म अख्तर का हिट हुआ जो है तो वो सिर्फ राजेश खन्ना के है, हाँ जैसे कि
2: कॉर्टेट,
1: हाँ और जैसे कि कुमार शानू, उसको भी अवार्ड्स मिला है लगातार 5 अख्तर अलकार, 5 अवार्ड्स मिला अख्तर अलकार, तो वो भी कुछ महत्व होना चाहिए ना। हाँ राजेंद्र जी जुबली हिट हुआ है वो तो कुछ अलग से हमारा हिट हुआ है लगातार फिल्म बनाने, 15 फिल्म राजेश खन्ना के अख्तर अलकार हिट हुआ, सोचो तो
2: ना। वो सही बात है, देख एक फिल्म जो यहाँ पर रहा दोली से फिल्म रहा दो रास्ते राजेश खन्ना के, वो फिल्म एक को बुन रेक्लामा ना भैल, तब वो 3 हफ्ता लगातार वो फिल्म चलल।
1: हम सूर्यनामा के भारत पहुँच गए।

0: दुनिया में रहना है तो काम करो प्यार, ये बात नहीं है कि रोज़ सुबह जाकर हुए मोर का कहना है, पर यह सुबह जागते हो तो अपने का तैयारियाँ करना है, घर बार कर काम, घर बार साफ सुथरा करना है, अपने आप को ख्याल कर रखना है, बच्चों को ख्याल करना, ये सब काम है रे मेरे भाई। अपना नखून साफ करना ये सब काम है, अपना दाढ़ी साफ करना, मुस्ताश अपना बनाना, मुस्ताश यानी कि मोच, पहले लोगों ने ऐसे मोच रखाते थे ऐसे कालम के ढकनागत चल, हाँ चलते थे और ऐसे ड्राई करते थे अपना मोच। आज के ज़माने में मोच का ये मोद जो ना है बल्कि बकम बाट के और बाट के मोद है, ये सब समय से चलता है, हो सकता है कि आगे में चल के ये सब कालम का ढकना रखाएगा इसे हमारे आने वाले पीढ़ी जो है नौजवान लोग। हाँ तो दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारो,
1: ये तो सही बात है।
0: हाँ बगैर काम करे हम आज जो सांस लेते वो भी एक काम है, हालांकि वो ऑटोमेटिक चलता है वो भी एक काम है। बगैर काम करे हम एक क्षण नहीं रह सकते, है ना बबली जी?
2: बिना काम के तो एक क्षण नहीं रह सकते, लेकिन आपने अभी बोला कि जो सांस चलता है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन जिस दिन सांस बिगड़ जाए उस दिन आप हाल देखो, 5 मिनट नहीं लोग रहते।
3: इस पे यूसुफ भाई आपके क्या राय है, जब सांस बिगड़ जाए तो बबली कहते हैं 5 मिनट 5 साल की तरह लगने लगता ना?
1: ये तो सही है कि जहाँ रुक गया तो गया,
3: रुक गया
1: तो
3: गया।
2: सांस रुकने से पहले अगर सांस उखड़ जाए हमारी क्या हालत हो जाएगी वो भगवान ही जाने।
0: तो उस समय पे पता चलता हैगा कि एक जीवन का कीमत कितना कितना अनमोल है, एक सांस के जरिए से हमारा ये शरीर है जो चल रहा है, अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए, सांस के संतुलन जो बिगड़ जाए तो समझ में आता है कि देखो ये जीवन कितना कीमती है। और तो मासिस जो सब कुछ हो रहा है तो सोचते हैं कि अच्छा चले दे ठीक होगा, मगर उसमें जब कुछ संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर में कुछ संतुलन बिगड़ जाता है, तब पता चलता है कि शरीर कितना कीमती है। इसमें आपका क्या राय है संजय जी?
3: मैं इस पे एक गीत चला देता हूँ।

0: ये सुंदर सा गीत जो महेंद्र कपूर के आवाज़ में हम सब सुने। भाई यूसुफ जी, पहले हमने और जब जा करके एसटीएफएस पे रिक्लामा आवे तो ये भी सुनने को मिलता था कि ये एक फिल्म इंडिया ओवरसीज और कुछ और कहा जाता था, उसके बारे में आपके कुछ संदेश या उसके बारे में आप कुछ जानकारी है?
1: या वेल द पारल के फर्तीखोर्दा खरा वो इंडिया ओवरसीज और जसोदरा के रहा द लुक्स फिल्म जो नावत रहा।
0: तो इंडिया ओवरसीज और द लुक्स, व्हाट इज द एसेंस? दैट वार बद्रैफ या फिल्म?
1: ट्वे मस्खपेय वार दैट
0: दी फिल्म्स बिनब्रख्त ओम ओम अटलांट उदेश में चल सके
1: है। और द पारल लेवत रहा इंडिया ओवरसीज से उसे रहा कॉन्ट्रैक्ट और जसोदरा वाला रहा डेलिक्स।
0: और यहाँ भी कहा जाता है कि हिंदुस्तानी के और भी बायोस्कोप थे, तो जैसे कि मेर सौरख में
1: रहा फन द हेयर बालदेव।
0: हाँ,
1: थिएटर के नाम हम भुलाई गई ली है,
0: डोम्बोरख के वासी लोगन, पर वहाँ बायोस्कोप थिएटर डोम्बोरख एहर जहाँ पारानाम भी होते थे और ऐसे ऐसे भी उसको ऊपर अपने शहरों को नाम भी रखा जाता था ना।
1: हाँ, पारानाम में रहा, डोम्बोरख में रहा,
0: क्वारासांग में, मेरे ख्याल से क्वारासांग
1: लेडिंग कंती रहा, भी
0: सरमक्का में भी रहा।
1: हमें जहाँ लग पता सरमक्का में रहा है, वो कहाँ पर हम ना कर पाते, वहाँ हम लोग ढेर शहर से ना ताल्लुक करते थे। द पारल और जसोदरा,
0: द पारल और जसोदरा यही। और कोनिंग स्ट्रीट में भी एक बायोस्कोप होता था,
1: सुन ली लातेर गोयल, हमने नहीं लिबर्टी की कौन सी नाम रहा पता ना है, इगोरा लिंकोलन, इगोरा डायमंड, लिबर्टी, इगोरा डायमंड हुआ लिफोर्नो बतेस्टा फैमिली सोलेमन।
0: ओके, डायमोन, हाँ हाँ, जैसे हमें ये बात, मुझे ख्याल है कि मेरा बचपन में फिल्म जाने का बहुत इच्छा था, तो उस समय पे मेरे ख्याल से चोन्नी में रहा टिकट, पर चोन्नी वाला टिकट पे एकदम आगे बैठना पड़ता था, तो वो लकड़ी के बांगी होते थे, जैसे कि नौता में होते थे, नौता में होते थे ना, लंबा लंबा
1: पिंदा बांगी बोले तरह सर। हम लोग आते तो मर रही
0: पार्टेर में।
1: हाँ, ऊपर तो रहा।
0: उस समय के टिकट कितना होते थे भुला गए होंगे आप, पर हमें ये ख्याल है कि हाँ कुछ चुन्नी या अठन्नी होते थे, तो एकदम आगे बैठना पड़ता था और पूरा फिल्म बैठ करके, और जैसे अब आराम से बैठा जाता है यहाँ जाओ बायोस्कोप में, वो नहीं होते थे
1: ना। हुआ रोस्टर से अपन फिल्म खाते आदमी लोग जाता रहा, एक्टर है और राज कपूर ऑफ दिलीप कुमार, श्यामी कपूर, देवानंद, प्रेमनाथ, तब और मोई मोई गाना भी मेरा आदमी लोग खनित करते रहा, तो या ना हाल ऑफ 3 घंटा में, 3.5 घंटा फिल्म संगम देख, 3.5 घंटा रहा,
0: 3.5 घंटा का फिल्म। अब देखा जाए कि भारत में भी अगर जब जावल जा है तो कभी वहाँ भी उसको बड़े बड़े मॉल बन गए ना बबली जी, तो मॉल में भी बड़े बड़े मॉल जो बन गए हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बड़ा सुंदर रूप से और रखा गया, पर वही भारत में, वही दिल्ली में, कहीं जो जाकर के लोकल जो बायोस्कोप है उसमें जब आप जाकर और बैठो तो मज़ा कुछ और होता है, ऐसा है बबली जी कि नहीं?
2: हाँ जी, वो तो है, फ़र्क तो दोनों में है। और भारत में भी पहले सबसे आगे वाली कुर्सी पे बैठने 5 रुपये टिकट होती थी, और उससे थोड़ा पीछे 15 रुपये, अगर बालकोनी में बैठना है तो 25 रुपये।
0: ये रुपए की बात हो रहा है। हाँ, और पहला का बात है हो रहा है। और जब देखा जाए कि बायोस्कोप जो इंडिया ओवरसीज और द लिक्स पर, इसमें सिर्फ एक ही दो बायोस्कोप होते थे जो उससे फिल्म लेते थे कि
1: खाली दुई गो रहा पे, हमें जहाँ लग पता है दुई गो, और द पारल वास खलिंक में क्या बोले सावित्री वहाँ पर ना पराख के जोन रहा पथफावनिका
0: में।
1: हाँ, और फैमिली बालदेव ये सब साथ काम करता रहा, और जसोदरा वाला रहा उसे ताजमहल लोग ये सब साथ करते रहा काम।
0: और मेरे ख्याल से भी निकेरी में भी कुछ बियोस्कोप होते थे और
1: के हुआ के उरा फरते खबर दखर द पारल के अफजे सदरा के वो पता ना है,
0: वो ना पता है
1: जी ना।
0: शांता जी, इसमें आप कुछ और, क्योंकि आपने पहला फिल्म जा करके देखे थे हाथी मेरे साथी,
3: आते आते और शांति में,
0: तो
3: जैसे यूसुफ जी बता रहे हैं ना, तो फिल्म वो सब जहाँ से लाते थे ना भारत से आता था, तब वहाँ पे फ्लैम्बोयंट वीडियोटेक जहाँ था हॉफस्ट्रैट में, तो वहाँ पे सब लाकर धरते थे और जेके जेके जहाँ जहाँ पर लेना था ड्राई करना था फिल्म, तो वहाँ पे से आकर फिर से ले जाते थे बड़ा बड़ा डिब्बा में ऐसे पानती धर ले और हाँ रोल में ऐसे धर देवे, जैसे आजकल में कैर्स के तहत में शुक्लधुन आयो मेन्तुअन में ऐसे एरोवन दो ऐसे ऐसने ऐसने बड़का बड़का एन बहना दोष नेफा में ही तरह हाँ और लोन तो मैं ऐसे रोल वन आए फिल्म दराय हुए जो ऐसे खट खट खट दराय हुए या सो है एक क्या पदान सो में ही खमा कहने मैं सो कुआं मोग दार हन फिल्म्स हाल ओम नान फरफॉल्खंस इन हन बियोस्कोप आफ्टर दरायन फॉर द लिव है बर्श तुंदर टाइट क्या धमाका था वो समय
1: वो लाइट
3: चिराग जब भर जा फिर से सब कोई बोले अब का है, तो सबको जाए बहरे कोई कोला कीने और पहले शौचस था शौचस और कोला ये दो ही चीज बहुत मशहूर था।
0: बियोस्कोप का एक स्पेशल बोतल बनाया जाता था ना, बियोस्कोप का कोला का एक स्पेशल बोतल होता था,
2: कोका कोला छोटी बोतल होती थी कोका कोला की। अब भारत में 400 चलते थे, सूरीनाम में कितने चलते थे शांता जी? भारत में थे सुबह 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और रात वाला 9 से 12, अभी तक ऐसे हैं।
1: अच्छा, नाम सूरीनाम में रहा 8 बजे से 12 बजे तो फिर और मितना इतना फिर 9 से 3 फिर और अतवार के रात डबल एम्पायर करत रहा
3: सवेरे ओफर दाह जो अंदराय होता सबे सुबह के वक्त अरे दिन में जो अंदराय हो के बोले माती नहीं
0: माती नहीं कहा जाता। शांता जी, शायद आपको ख्याल होगा कि एसटीवीएस पे भी ना द न्यूज में बुझा है एक प्रोग्राम आता था रॉनी रेंस का, जिसमें वो फिल्मों के बारे में जो कौन बियोस्कोप में कौन फिल्म आने वाले है उसके बारे में अखेंदा
3: हो सकता है, मुझे पता नहीं,
0: पर रखा जाता था।
3: अच्छा,
0: इसमें भी कितने हमारे सुनने वाले हो शायद जिन्हें थोड़ा से ख्याल आता होंगे या आती होंगे,
3: तो तुरंत आप तार उठा कर आप तार लगा दो। तार का नंबर कितना संजय जी?
0: तार का नंबर आप मुझसे पूछ रहे हैं, पर तार का मालिक होते हैं यूसुफ भाई, और मालिक से हम थोड़ा बचा के रहना पड़ता है ना।
1: अच्छा, तार का नंबर है 070-362-2077। ये तार पुराना जो आप खुल गया है और वो सैन बेसक में दी आंद्र टेलीफोन दैट इज 070-365-2247।
3: एक बार फिर से हरहाल करते तो जो आज पे तार कर सकते
1: हैं। हां, जो 070-362-2077।
3: हाँ मेरे सुनने वालों, आप झिझकना मत, डरना मत, आप जो जरूर से तार लगाओ और हमारे साथ भी अपना वो पुराना ख्यालात जो है जो हम सब उस दिनों में गुजारे हैं आप यहाँ हमारे साथ भी बांट सकते हो।

0: सर।
1: यूसुफ भाई वहाँ पर और क्या कहते
2: सिपोज जो रहा
1: सिपोज
2: पुराना वाला रहा फैमिली बेचान लोगन रहा दो तीन भाई लातर आये भाई शिव
1: और कौन सा भी उसको
2: दपारल
1: में तो उसमें ये होता था सिपोज के जब अगर आप कोई जान पहचान वाला हो तो बस चुप्पे से अंदर चल जाते थे कि नहीं
2: तनी
1: गोलमाल होता था कभी काल
2: वहाँ पर रहा मुफरोका राजीत सिंह क्लॉक से सब तक तक तक तक सब गिनत रहा ना क्लॉक हुई तब सिपोज के बोला आओ यहाँ अंदिमोफरो वॉज हिल स्ट्रेंथ।

0: बात।
1: जी हाँ, सुनने वालों, यहीं से यह प्रोग्राम ख़त्म है और सब कोई के मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़ और नमस्कार।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सभी जानकारी है, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था स्वप्न विज्ञान, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक कारण कि जो हमें सपने आते हैं उन सब का प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारणों के अनुसार कफ पित्त वात का परिणाम अधिक होने पर मानव को अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं कि कई बार जैसे हम बीमार होते हैं उसके अनुसार भी हम सबको सपने आते हैं।

कफ प्रभाव धीन, सफेद चीजें गुफा तारों का समूह, मेघमंडल स्फटिक मणि संगमरमर, दिव्य पदार्थ फल यज्ञ सामग्री यज्ञ मंडल सुंदर आभूषण। अगर कफ की बीमारी हो तो आप सबको ऐसे सपने दिखाई देंगे ज़्यादातर। वात प्रभाव दीन, ऊंचाई पर चढ़ना आसमान मुक्त संचार उड़ना। पित्त प्रभाव दीन, आग पीली पृथ्वी तक्षिण शस्त्र जलती दिशाएं अशोक वृक्ष आघात गिरना नाश्ता करना क्रोध करना। दो स्वप्नों का परिवार,

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दुःस्वप्नों का परिहार। लाल चंदन की समिध्या घी में डुबोकर 1000 गायत्री मंत्र का हवन करना। दूसरा, शुचि मूर्त होकर पूर्वाभिमुख आसन होकर अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस एव नारायण इन 8 नामों का उच्चारण 10 बार करें। तीसरा, भक्ति भाव से विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नहरि राम गोविंद दधिवामन इन 10 नामों का 100 बार जाप करें। चौथा, निष्ठापूर्वक 1000 श्री कृष्ण का जाप करें। पांचवा, शामी अद्भुत वनस्पति पूजन करें तथा सोने से पहले शामी सिराने रखें। छठा, सूर्योदय से पूर्व पूर्वाभिमुखी होकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। सातवां, शुचिमूर्त होकर ओम नमः मंत्र के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती जी का जाप करें। आठवां, ओम ही श्री काली दुर्गति नाशिने महामाया स्वाहा का 10 बार जाप करें। नौवां, ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा का 10,00,000 जाप से साक्षात मृत्यु लौट जाती है। दसवां, प्रातः प्राणायाम करें या तगर के हरे पत्ते चबाएं। सुनने वालों, ये सब था दुख स्वप्नों का परिहार, यानी जो दुख वाले सपने होते हैं उनका निवारण कैसे करना चाहिए।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। स्वप्नों के प्रतीक, स्वप्न मानव जीवन को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वरदान है। यह देवी वरदान चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही मिला है, और ये खाली वरदान इंसान को ही भगवान ने दिया है, जो कि उसके मानव जीवन को सर्वोत्तम निधि कही जा सकती है। स्वप्नों का आधार काम भावना स्थिर की है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में जितने भी उपकरण हैं, वे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो पुरुष चित्त प्राकृतिक और दूसरे स्त्रियोचित। पुरुषोचित प्राकृतिक, जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान ने भी स्त्री और पुरुष दो जीव बनाए हैं, तो उसी के आधार पर शास्त्र विज्ञान भी अपना अलग अलग नीति देता है। पुरुषोचित प्राकृतिक, अस्त्र शस्त्र पुरुष वस्त्र मशीन नक्शा पुल चाबी लकड़ी पेड़ संदूक छाता आदि। और स्त्रीयोचित प्राकृतिक है दरवाजे ताला गुफा टोकरी कपड़ों के उपकरण बर्तन मशीन आदि। यह एक जीव की सृजनात्मक शक्ति का नमूना है। सिंह कभी झुंड में नहीं रहता, वह अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुनने वालों, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि हीरो की ओवरी नहीं मूल्य गिरा नहीं पाती, सिंहों का लहड़ा नहीं साध ना चले जमाती।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, क्यों आती है नींद हमें, कि हम मनुष्य लोगों को कभी ज़्यादा नींद आती है कभी कमती नींद आती है, इसका भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता होगा ना। यदि हम जागते हुए भी लेटे रहें तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है, वैसे भी सोते समय हम पूर्णतः स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, जो मांसपेशियों की कसरत कराने के लिए करते हैं ना, ना कि उन्हें आराम देने के लिए। अतः हमारे शारीरिक नहीं अपितु मानसिक आराम की आवश्यकता होती है, परंतु सोते समय मस्तिष्क सुस्त नहीं वरन अधिक क्रियाशाली रहता है। सुनने वालों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा काम करता है, और हम सोचते हैं कि शायद हम सो रहे हैं तो दिमाग भी थोड़ा शांत है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब हम काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी घट जाती है, यानी जितने कम लोगों से हम मिलते हैं उसी अनुपात में हमारी नींद भी घट जाती है। वैसे हम अपने जीवन को एक तिहाई से अधिक भाग सोने में ही बिता देते हैं। नींद कई रोगों के निवारण की रामबाण औषधि है।

उदित नारायण जी और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाव हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं, तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी सांस में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

तुम चैन हो, करार हो, मेरे इश्क हो, मेरे प्यार हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, म्यूज़िक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलन और गिटार से काम चला लिया है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.fawnfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं। एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यार ही मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा है, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है, बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं, हाँ बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी ही आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है, वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर ये भी है एक।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं राहत फतेह अली खान।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

रोशन के साथ पर रवि साहब और लता जी मिल के आपको ये गीत सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जब आपका हृदय से स्वागत है तो लीजिए आपको ये गीत से हम आप स्वागत करते हैं इस तरह से लता जी।

पिया बोले होले होले। आपने तीन आवाज सुने, सैफ अली खान की, सोनू निगम और लता जी की। ये तीनों मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओपन नैयर के साथ पर कश्मीर की कली रफी साहब।

किसी न किसी से कहीं ना कहीं कभी ना कभी ओपी नैयर के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

महेंद्र कपूर जी, ये शानदार दिवस में आपको सुनाएं लता जी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं। चलिए ये गीत के बाद हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत इस तरह से आ रहा है।

ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म दिल ने फिर याद किया 1900 देखूं तो नहीं 1966 का ये गीत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: That woman, Elena.
2: तुझसे नाराज जिंदगी अनूप घोषाल आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

अगर दिल किसी से लगाया ना होता, रवि साहब की आवाज में हम आपको सुनाएं चित्रगुप्त के साज पर। नेखंतीन एन शस्त्र का ये फिल्म है और हमने पेश की फिल्म बड़ा आदमी से निकाल कर। चलो देखते हैं अगला गीत क्या ख्याल है। अगर जो मैं आपको सुनाऊं, सोनू निगम, साजिद और सुनिधि चौहान, ये तीनों मिलकर क्या कमाल करते हैं।

फिल्म लव स्टोरी में से निकाले, हमने ये गीत और पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आपको एक शुभ, सभी शुभ हम पेश किया जा रहा है। चलो हमको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से।

न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगी। ये शानदार गीत चला हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। इस गीत के पीछे एक राज है, एक कहानी है, लेकिन कभी फिर बता देंगे, इसे हम याद रखेंगे, शायद आप भूल जाएं, लेकिन कभी भी अगर ये गीत मैं चलाऊंगा तो इसकी कहानी आपको अवश्य बता दूंगा। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

चेहरा मालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम, है टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जा...

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा
1: जा ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है तो लीजिए। आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रफ़ी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी, और मैं तो मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेकन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म, और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, स्थानीय रेडियो पर।
1: ओ, आज भी जोनी आप लोग को कुछ शायर और शायरी से और कुछ सुनाएगी प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम। यहाँ पर हम आप लोग को चलाते हैं, सुनाते हैं कि कहते हैं इससे ज़्यादा तुझे और कितना करीब लाऊं मैं, इससे जाना तुझे हम तुझे और कितना करीब लाऊं मैं, कि तुझे दिल में रख कर भी मेरा दिल नहीं और भरता है।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

कुछ रिश्तों को मुलाकातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस याद आते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान।

सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी।

आज हम विचार करेंगे शकुन विचार, और आज हम करेंगे कुत्ते के ऊपर शकुन विचार। कुत्ता गमन समय जोशवन, फर फर दे कान, तुरंत यात्रा टाल दो, अशुभ शकुन पहचान। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम गमन यात्रा पर जा रहे हैं और सामने से फर फर करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो अपनी यात्रा को तुरंत टाल देना चाहिए। शकुन यात्रा में कुत्ते को शकुन रतन कहा जाता है। देवराज इंद्र शर्मा के कर्तव्य पालन से प्रसन्न हुए और गिद्ध को क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू रिश्वत के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख हो गया था, इसलिए इस विश्वासघात का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना होगा। तुम भविष्य में मृत प्राणियों का भक्षण करोगे और प्राणियों को तुम्हारा दर्शन अशुभ फलदायक होगा। इसके साथ ही शर्मा को वरदान दिया कि तुम कर्तव्य निष्ठा के कारण समस्त गृहस्थी प्राणियों में सम्मान प्राप्त करोगी।

विद्वानों का मत है कि प्रेत ग्रस्त व्यक्ति को देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है। श्वेत वर्ग वाला कुत्ता विप्र, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, पीत वर्ण वाला वैश्य और कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहलाता है। यदि गमन कर्ता के सम्मुख श्वान सुनने वालों, जैसे हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता आगे से आ गए तो क्या होता है? दाहिने पैर से दाहिना अंग खो जाता है तो उत्तम फल मिलता है। बाएं पैर से दाहिना अंग खो जाए या बाएं पैर से बाएं अंग खो जाए, अशुभ फल मिले। जमाई ले, मल अथवा मूत्र का त्याग करें, निर्धबी होकर जमीन पर लेट जाए, यात्रा कार्य में विघ्न असफल। जिन वृक्षों पर अंकुर फूल लगे हों, जिनमें दूध निकलता हो, गंदे पानी से भरा मटका, गोबर, खेत, ईंट, मंदिर अन्न के समूह, भंडार, अन्य शोभायुक्त स्थान या वस्तु पर कुत्ता मूत्र त्याग करता दिखे, अनेक प्रकार के लाभ।

सुनने वालों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुत्ता अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर रास्ते में दिखाई दे, अगर वो अपना दाहिने पैर से दाहिना अंग को खुजलाता है तो हमें उत्तम फल प्राप्त मिलता है, और अगर बाएं पैर से दाहिना अंग खुज जाए तो उससे हमें अशुभ फल मिलते हैं। सुनने वालों, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, वह जमाई लेता है यानी उबासी आती है उसको, मल मूत्र का त्याग करता है तो यात्रा कार्य में विघ्न आने वाले हैं, तो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। सुनने वालों, और जिन वृक्षों पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, दूध निकलता है और पानी से भरा मटका या गोबर या खेत कुछ भी दिखाई दे और वहाँ पर कुत्ता यानी मूत्र त्याग करे तो वो उससे लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों,

आसन, छत्र, छाया, भी या धूल के ढेर पर मूत्र त्याग करे तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, ओखली, मूसल, कांजी से भरे पात्र, सूप पर अपने दाहिने अंग को उठाकर मूत्र त्याग करे तो बहुत सा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, मुख में रोटी, पूड़ी, मिठाई, फल, मांस आदि दिखे सदा ही धन का लाभ होता है। सुनने वालों, ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने दाहिने पैर से अपने मस्तक को खुजाता है तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों,

सुनने वाले, मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताई, अगर ये सब कार्य कुत्ता करता दिखाई दे तो उन सब कार्यों में धन प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। दूध अथवा जल के पात्र को देखकर आंख मीच ले, बाद में उसी स्थान पर सो जाए, वस्त्र भूषण का लाभ। सोता हुआ गर्दन ऊंची करके देखे, अर्थ हानि असफलता। कीचड़ से सना हुआ मुख में पत्थर अथवा हड्डी लेकर आ जाए, यात्रा में चोरी का भय। मुख में हड्डी लेकर भौंके, मृत्यु समकष्ट। समुख आया कुत्ते की पूंछ कटी, कान कटे। रोगी दुर्बल हो, चिंता हो, भयतुर हो, असफलता की प्राप्ति। जल से बाहर निकलकर अंग हल्लाता हुआ, चोरी का भय।

सुनने वालों, मैंने आपको बताया कि दूध अथवा जल के पात्र को देखकर कुत्ता अपनी आंखें बंद कर ले और बाद में उसी स्थान पर सो जाए तो वस्त्र आभूषण का लाभ मिलता है। सुनने वालों, अगर सोता हुआ कुत्ता गर्दन ऊंची करके देखे तो उसमें असफलता मिलती है। सुनने वालों, अगर कुत्ता कीचड़ से सना हुआ है और मुख में पत्थर अथवा हड्डी को लेकर आए तो यात्रा में चोरी का भय होता है। सुनने वालों, मुख में हड्डी लेकर भौंके तो उस समय असफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों, जल से बाहर निकलकर अंग हिलाता है तो चोरी का भय होता है। सुनने वालों,

घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्ता बार बार भौंके तो राज्य दंड का भय तथा चोरी का भय। घर में घुसकर खंभे को आलिंगन करे अथवा चूल्हे पर चढ़ जाए तो प्रियजन से समागम। पिछले पैर को अगले से खुजाए सभी कार्यों में सफलता। बहुत देर तक आकाश गोबर मांस विष्ठा को देखता रहे तो सुंदर स्त्री धन का लाभ। अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा किसी प्रियजन का मरण हो। रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले औरतों का गर्भपात बलात्कार की दुर्घटना अग्नि कुंड से जन धन हानि।

सुनने वालों, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें हमें राज्य दंड कि हमें किसी चीज के चोरी का भय भी होता है, कोई हमारा चोरी कर लेगा या फिर हमें किसी चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। और घर में घुस कर अगर खम्भे को पकड़े या चूल्हे पर चढ़ जाए तो हमारे प्रियजन से मिलन होता है। पिछले पैर को अगले से खुल जाए तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बहुत देर तक आकाश, गोबर या मास्ट को देखता रहे तो सुंदर स्त्री का लाभ होता है और धन का लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा मिलती है और किसी प्रियजन का मरण का समाचार सुनाई देता है। अगर रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले तो औरतों का गर्भपात, बलात्कार की दुर्घटना और अग्निकुंड में जल हानि ये सब प्राप्त होते हैं। सुनने वालों,

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रातः अग्नि कोण में सूर्य को देखकर भौंके, अग्नि या चोरी का भय। दिन के मध्य में भौंके, मृत्यु का भय। सायंकाल में भौंके, लड़ाई झगड़े में रक्तपात। सायंकाल में सूर्य की तरफ मुख करके रोए, महान दुख। किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे, निश्चित रूप से चोरी। घर के द्वार पर सिर रखकर स्त्री को देखे और कू कू करे, स्त्री को रोग। सुनने वालों, इन सब का ये मतलब है कि जब सूर्य की किरणें सुबह धरती पर पड़ती हैं और कुत्ता उसे देखकर भौंकता है तो अग्नि या चोरी का भय होता है, यानी आग लगने का खतरा या फिर चोरी का डर लगता है सुनने वालों। और दिन के मध्य में भौंके तो मृत्यु का भय, और सायंकाल शाम को भौंके तो लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा यानी ऐसे सुनने को मिलता है। और शाम रात को भौंके और फिर महान दुख। और किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे तो निश्चित रूप से उस घर में चोरी का भय, चोरी का डर है। और घर के द्वार पर सिर रखकर किसी स्त्री को देखे और कुकू की आवाज़ करें तो इससे स्त्री को किसी भी रोग का खतरा रहता है सुनने वालों।

घर के भीतर धीरे करके मुख बाहर निकाल कर किसी स्त्री को देखे और ऊंचा स्वर करे, स्त्री के व्यभिचरणी का संकेत। मांस हड्डी भोज्य को राख के ढेर में छुपाए, अग्नि भय परवासी के पीछे आकर रोए, मृत्यु भय की संभावना। परवासी को कुकू करता हुआ बार बार आलिंगन करे तथा उसकी प्रदक्षिणा करे, अवश्य ही कारागार में जाना पड़ता है। गोबर से लिपे चौक में आकर बोले, अति संपदा प्राप्त। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी के घर की स्त्री को देखकर ऊंचे स्वर में बोले तो स्त्री के व्यभिचरण का संकेत मिलता है। अगर मांस हड्डी भोज्य को देखकर राख के ढेर में छुपाता है तो उससे अग्नि का खतरा रहता है। सुनने वालों, अगर प्रवासी के पीछे रोए, अगर कोई अरे प्रियजन आता है और उसके पीछे पीछे जाए तो मृत्यु की संभावना रहती है। अगर प्रवासी को कुकू करता हुआ बार बार उसके गले मिले और उसकी प्रदक्षिणा करे तो अवश्य ही उसको जेल में जाना पड़ता है। और गोबर से लिपे चौक में आकर बोले तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने गीत सुना। अब गीत के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बता रही थी कि स्वप्न विज्ञान और उसमें कुत्ते के शकुन और अपशकुन। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कुत्ता अगर जगह को खो दे तो महान कष्ट, एक आंख से रोए कल्याण और शुभ, पर वासी के आगे मूत्र करके आ जाए कार्य में असफलता, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति, गमन करता के सम्मुख आए धन धन्य की प्राप्ति, परवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए दोनों नेत्रों को नचाए मृत्यु सम कष्ट, परवासी के आगे अपने दक्षिण ओरों को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी जगह को खोता है तो महान कष्ट होता है, अगर कुत्ता एक आंख से रोता है तो कल्याण और शुभ की प्राप्ति होती है, प्रवासी के आगे मूत्र करके आ जाए तो कार्य में असफलता की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए और निश्चय रूप से उस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, गमन कर्ता के सम्मुख आए तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, परवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए यानी दोनों कानों को हिलाए और दोनों आँखों को नचाए तो मृत्यु का समय कष्ट होता है। सुनने वालों, परवासी के आगे अपने दक्षिण ओरू को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत की संभावना होती है। सुनने वालों,

तो मैं आप सबको बता रही थी कि कुत्ते के बारे में कि यार कुत्ता हमारे सामने आ जाए या सपने में आ जाए तो उससे क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं सुनने वालों। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। उदार को बार बार चाटे उसी दिन यमलोक की प्राप्ति। रोगी के सम्मुख अपनी पूँछ तथा अपना हृदय स्थल बार बार चाटे या सूंघे 2 या 3 दिन में उसकी मृत्यु। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता आंगन में आकर सो जाए फल की सिद्धि नहीं होती। किसी रोगी के सम्मुख कानों को फड़फड़ा कर शरीर समेट कर सो जाए रोगी शीघ्र यमलोक को चला जाता है। यदि रोगी के सम्मुख देह को समेट कर दोनों नेत्र बंद करके मुंह फड़फड़ा लंबा श्वास छोड़े यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेता है। किसी घर में जिसमें रोगी हो किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या रस्सी मुख में लेकर प्रवेश करे रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा।

सुनने वालों, इन सब बातों का ये मतलब है कि कुत्ता बार बार अपने को चाटे तो उसी दिन यम लोक की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और रोगी के सम्मुख यदि कुत्ता अपनी पूंछ अपने हृदय से बार बार लगाए, चाटे या सूंघे तो यो दो या तीन दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता घर के आंगन में आकर सो जाए तो फल की प्राप्ति होती है सुनने वालों। किसी रोगी के सम्मुख दोनों कानों को अगर हिलाता है और शरीर को समेटकर सो जाता है तो रोगी सीधे यमलोक को चला जाता है सुनने वालों। यदि रोगी के सम्मुख अपने शरीर को समेटकर और दोनों आँखें बंद करके और लंबा श्वास छोड़ता है तो यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेते हैं सुनने वालों। किसी घर में जिसमें रोगी हो या किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या किसी मुख में लेकर प्रवेश करें तो रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा सुनने वालों।

पर वासी के सम्मुख फिष्टा या सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर आगे आकर भाग जाए तो उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, थोड़ी दूर साथ चलकर पीछे लौट जाए, बहुत धन मिलने। पर वासी के सम्मुख पुष्प लेकर आए, अति विपुल संपदा मिले, यदि वह श्वन काला हो, कार्य नाशक का सूचक। परवासी के संग दो बाई ओर चले, सुंदर स्त्री तथा धन प्राप्ति, यदि दाहिनी ओर चले, चोरी से धन की हानि। परवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी और को लेकर आ जाए, निश्चित ही चोर धन चुरा ले जाएगा। सुनने वालों,

उसका कुत्ता यात्री के सम्मुख बैठ जाए और सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर, तो इसका मतलब है उत्तम वस्तु की प्राप्ति, कि उसे कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होगी सुनने वालों। और कुत्ता अगर थोड़ी दूर चलकर पीछे वापस लौटाए तो बहुत सारा धन मिलता है सुनने वालों। और अगर कुत्ता फूल लेकर आए, अति विपुल संपदा और बहुत सारे धन प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर सुनने कुत्ता बाईं ओर चले तो सुंदर स्त्री और धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और यदि कुत्ता दाहिनी ओर चले तो चोरी से धन की हानि, कि हमारा धन कोई चुरा लेगा सुनने वालों। प्रवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी को लेकर आगे आ जाए तब भी चोर को धन चुरा लेगा सुनने वालों।

यात्री के समक्ष ताजा हड्डी लेकर आए शुभ, सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए अशुभ, अपने शरीर को बार बार खुजाए कार्य में असफलता, दाई और जोड़ा साथ लेकर चले या आलिंगन करे तो स्त्री या धन की प्राप्ति, दाई ओर से बाई ओर को घुमाता हुआ चला जाए संग्राम में पराजय कार्य का नाश, क्रोधित होकर आगे बढ़े श्राप एवं बंधन मिलता है, कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे राजा धन छीन ले, गमन अथवा प्रवेश समय युद्धरत युद्ध में पराजय, प्रवासी को देखकर क्रोध से घूर घूर करे या भय से भौंके निश्चित रूप से धन हानि।

अगर कुत्ता यात्री के आगे पीछे ताज़ा हड्डी लेकर घूमे सुनने वालों, तो उसका मतलब है कि शुभ प्राप्त होते हैं, शुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। और सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए तो अशुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपने शरीर को बार बार खारिज करता है तो कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। दाई ओर जोड़ा साथ लेकर चले और तो स्त्री या धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और कुत्ता दाई ओर से बाई ओर घूमता हुआ चले तो संग्राम में पराजय और कार्य का नाश होता है सुनने वालों। क्रोधित होकर आगे बढ़े, श्राप एवं बंधन मिलता है। कुत्ता अरे क्रोध से गुस्से से आगे दौड़ा आए तो उससे श्राप मिलता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपना कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे तो राज धन सब छीन जाता है सुनने वालों। अगर कुत्ता घर में प्रवेश करे या रात में तो युद्ध में पराजय, तो युद्ध में हानि मिलती है सुनने वालों। और अगर कुत्ता यात्री को देखकर क्रोध से घुर घुर की आवाज़ करे या भौंके तो निश्चित रूप से उससे धन की हानि होती है सुनने वालों। अब अभिज्ञ की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो गीत अमिताभ बच्चन की फिल्म का था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रवासी के सम्मुख अपनी पीठ को सूंघ कर दांत अथवा नख से वस्त्र खींचे, धन का लाभ। प्रवासी के बाएं अथवा पीठ पीछे क्रूर शब्द करे, युद्ध में पराजय। एक आगे और पीछे भोंके अनेक दुख, पैरों को सूंघे शीघ्र यात्रा गमन हो। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए कार्य सिद्ध। जीभ से पेट को छुपाए लाभ, विष्टा करे या जमाई ले चिंता से मुक्त। याद रखें प्रवासी पुरुष हो तो कुत्ते का दायां अंग और प्रवासी कन्या हो तो कुत्ते के बाएं अंग को चेष्टाएं अनुकूल और शुभ होने वाली होती हैं। इसके विपरीत पर प्रतिकूल फल मिलता है। सुनने वालों, जो अभी मैंने आपको बताया तो इसमें ये था कि अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता यात्री की पीठ को सूंघे और अपने नखों से वस्त्र खींचे तो धन का लाभ होता है। सुनने वालों, अगर यात्रा पर अगर कोई जा रहा है और कुत्ता उसके पीछे पीछे क्रूर शब्द करे यानी जोर से बोले तो युद्ध में पराजय होती है, और अगर पीछे पीछे भोंके तो अनेक दुख प्राप्त होते हैं। सुनने वालों, अगर पैरों को सूंघे तो शीघ्र यात्रा गमन हो, तो शीघ्र यात्रा पर चले जाना चाहिए। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए तो कार्य सिद्धि, तो कार्य सिद्ध होते हैं। सुनने वालों, जीभ से पेट को छुए तो लाभ मिलता है। सुनने वालों, विष्टा करे या जमाई ले तो चिंता से मुक्त, तो चिंता सारी दूर हो जाती है। सुनने वालों,

हल ले जाते हुए बाईं ओर, घर आते दाईं ओर मिले उपज अच्छी। जुआरी को जुआ खेलने जाते दाईं ओर मिले जुए में अत्यधिक लाभ। उसी को दाईं ओर अंगड़ाई लेता, नींद लेता, मल त्याग करता, मिले तो लाभ प्राप्त। किसी गर्भवती के दाएं और भवन में या दीवार पर पेशाब करे पुत्र लाभ, यदि बाएं और ऐसा करे पुत्री का जन्म। मूत्र त्याग की बजाय प्रस्तन हो गर्भपात। सुनने वालों, ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब स्वपन विज्ञान पुस्तक से निकाली जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। अगर कोई किसान हल ले जा रहा है और कुत्ता उसकी बाईं ओर आता दिखाई दे तो उपज अच्छी होगी, यानी कि उसकी फसल अच्छी होती है। सुनने वालों, जुआरी को जुआ खेलने जाते हुए दाईं ओर कुत्ता मिल जाए तो जुए में उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, उसी को दाईं ओर अंगड़ाई लेता हुआ, नींद लेता हुआ, मल त्याग करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, और अगर किसी गर्भवती स्त्री की दाईं ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे तो पुत्र लाभ, यानी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, और यदि बाईं ओर ऐसा करे तो पुत्री का जन्म होता है। सुनने वालों, और मूत्र त्याग की बजाय प्रसन्न होकृत करे गर्भपात। अगर कुत्ता मूत्र त्याग करके प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो उस स्त्री का गर्भपात हो जाता है। सुनने वालों,

प्रवासी को नौकरी की तलाश हो, उसके दाएं और प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वासपात्र नौकर या उदार स्वामी मिले। चुल्लैया ऊंचे स्थान पर दाएं पैसे सिर खुजाए, इच्छित कार्य में सफलता। यदि ऊंचा स्थान मलबे का ढेर हो, कार्य सिद्धि। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ सिर उठाकर देखे और कान फड़फड़ाए, अशुभ है। मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी उछालते दिखे या हड्डी मुंह में दबाकर घुराते दिखे, भयंकर कष्ट। दाएं पैर से दाई आँख खुजाए, मित्र आगमन। यदि सर को खुजाए, अत्यंत प्रियजन का आगमन। गर्मी में छांव में बैठक घुराता है, मित्रों से लड़ाई। प्रवासी को नौकरी की तलाश और दाएं प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वासपात्र नौकर या उदार स्वामी मिलता है। सुनने वालों, अगर ऊंचे स्थान पर कुत्ता बैठा है और अपने सिर को खुजाता है तो इच्छित कार्य में सफलता मिलती है। सुनने वालों, यदि ऊंचे स्थान पर मलबे के ढेर पर बैठा है तो कार्य की सिद्धि होती है। सुनने वालों, यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ दिखाई दे तो उससे अशुभ लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, अगर मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी को उछालता है या मुंह में हड्डी दबाकर कुत्ता घुराता है तो उससे भयंकर कष्ट प्राप्त होता है। सुनने वालों, दाएं पैर से दाई आँख को खुजाए तो मित्र का मिलन होता है। सुनने वालों, यदि सर को खुजाए तो प्रियजन का आगमन।

सुनने वालों, जो आज मैंने आप सबको बताया कुत्ते के शगुन अपशगुन के बारे में, ये पुस्तक स्वप्न विज्ञान से लिया गया और इसके लेखक है डॉक्टर जगदीश गौतम जी।

बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। सुनने वालों, मैंने आप सबको जो आज का कुत्ते के बारे में बताया, तो आशा रखती हूँ कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार। सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश हम सब प्रारंभ करने वाले हैं। और आज फिर हम सब उपस्थित हो गए स्टूडियो में, जो शांता जी भी उपस्थित है और बबली जी भी साथ दे रहे हैं हमारे साथ। पनील के पीछे जो हर सप्ताह बैठ रहे हैं वो भी अभी आने वाले हैं। शांता जी, आपके एंट्री हो जाए तो आज का विषय की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं।
1: ने संजय जी ने कहा तो हम आपको भी हार्दिक से स्वागत कर रही हूँ और आपको मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो हम सबके है तो हम उस ओर बढ़ने वाले हैं कि भारत देश में लोग और जा करके वहाँ से हमारे कल्चर जो हमारे हिंदुत्व है और उसमें कितने कितने प्रकार के सुंदर सुंदर गीत के साथ और कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भारत देश में। शांता जी, आपको पता है कि कितने अवभाषा चल रहा है?
1: बहुत से है, बाकी आंताल है, आंताल वेदिक नहीं सो प्रसिस नहीं।
0: नो ऑफ फेर चल वेल व्हाट एक हैव कुन फरनेम 415 talen in India, waarvan er 24 officiële talen in India। शांता जी, ये बात है कि 24 भाषाओं जो ऑफिशियल है और वो आप खास करके देख सकते हैं जो हमारे नोट होते ना भारत के नोट पे, तो उस पे ध्यान देना कि उस पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा भाषा उस पे और वहाँ पर लिखा हुआ है।
1: अच्छा,
0: हिंदी, पंजाबी, ऐसे कई कई कितने भाषा है। पर उस ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ने वाले हैं। वो गीत का बोल क्या है शांता जी, आप ही अनाउंस कीजिए।
1: हाँ जी, तो जैसे प्रति सप्ताह के दिन हरदम आज तो आएगा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: दोस्तों, जैसे अभी आपने सुने, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। आज के कार्यक्रम जैसे कि आपने सुन ही लिया है कि हमारा जो अलग अलग और प्रकार के कलाकारों अलग अलग स्थानों से अपना कला से प्रदर्शन करते हैं, तो श्रीमान बेई डैक जो हैकन द्रंथ शहर से हम सबको टेलीफोन इस यहाँ आंसलॉइट हो रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। Luisteraars, we hebben de andere kant van Nederland, Heiken, een staan he, jo Drenthe shahar mein hai, aur Shriman Bey, jo hum sabko saath mil rahe hai, telefoon dwara. Goedendag en welkom in de uitzending van Fahon Hindustani Radio.
1: Dank u wel, Sanjay. En leuk dat ik in de uitzending mag zijn. Twee dagen geleden zijn we elkaar voor het eerst, ontmoet, dacht ik, op drie dagen. En nu in de uitzending, dat is bijzonder.
0: En wij

0: तारा जैसे हम अभी आपने गीत सुने तो ये नहीं है जैसा हमारे संजय जी ने कहा कि एक चांद या एक सितारा है
1: जी। मैंने हर बार यही समझता था शांता जी कि एक तारा बोले तो ये, पर ये आपको मोहम्मद रफी जी के बारे में भी कुछ है इसका संदेश था।
0: जैसे मोहम्मद रफी जी ने उसका इतिहास है तो वो जो छोटा बच्चा था तो ऐसे ही फकीर जा रहे थे तो वो हरदम उनके साथ ऐसे उनके पास खींचते चले थे कितनी दूर तक। और मुझे तो वही से तो मुझे भी पता चला कि एक तारा एक इंस्ट्रूमेंट है।
2: देखिए एक तारा मेरे हिसाब से एक तारा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें एक ही तार होती है
0: जी,
2: और इसीलिए उसको उसका नाम एक तारा
0: है। हाँ जी
1: दोस्तों सुनने वालों, जैसे कि आप सुन रहे हैं श्रीमान बेईजी जो अगले और हाइकन शहर से हम सब के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत देश से जुड़े हैं और यहाँ हम सबको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटन एक तारा के बारे में और जा कर के सुनाए। तो शायद मैं सिर्फ ऐसा नहीं हो कि शायद मैं ही नहीं पहचानते होंगे एक तारा को, पर एक तारा का पता भी आज चल गया। तो मैंने बेईजी वतवार द अंदर इंस्ट्रूमेंटन
3: वत एन एल bijzonder instrument is in de muziek, dat is de kamok. Die vind ik zelf vind ik een prachtig instrument. Het is ook een trommeltje die ze onder hun arm hebben met twee snaren, die dan weer verbonden is met een heel klein trommeltje die ze in de hand hebben. En dan kunnen zij met een soort plectrum, wat gemaakt is van een buffelhoorn, spelen ze dan op die snaren en dat geeft een soort golvend geluid. Een beetje, het is een beetje, het is een hele mysterieus geluid eigenlijk. En dat is de kamok. Verder spelen ze vaak op de dotara, dat is een soort luid.
0: Ja.
1: Heel eventjes, want ik wil toch nog iets meer over de instrumenten graag, want ik neem aan dat u ook zoiets hebt meegenomen vanuit India en Babli had ook wat gegevens over de ektara. Babli, wat wist jij van wat meneer B. net vertelde over de ektara? Kan je dat nog meer in het Hindi vertellen?
2: Haanji, jaroor. Ektara ek taat vaadde hota hai. Baans ke oopar ek khooti gaad kar, us par taar ko kas diya jata hai. Isi taar ko chheed kar vipin swar nikale jate hai. Ektare ka prayog jayatar bhajan और सुगम संगीत में होता है। बंगाल और बिहार में प्रचलित एक तारा का निम्न भाग काठ या चमड़े से मड़ा होता है, लेकिन वह नीचे से चौड़ा होता है।
3: या दिस नास्ट द एक्तारा इज एन हेल टिपिसे बाउ इंस्ट्रूमेंट इज द कमोक एंड दैट इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट वेयरबाय ze een soort trommel hebben met een vel aan de onderkant wat verbonden is met twee snaren met nog een klein trommeltje die ze in hun hand hebben en door aan dit handvat te trekken kunnen ze de spanning op de snaren variëren, waardoor je een hele mysterieus golvend geluid krijgt. En dat is echt een heel typerende instrument wat je in geen enkele andere land of muziekstijl eigenlijk tegenkomt. En ik heb, dat loop ik een beetje vooruit. Toen zij in Nederland waren, toen hebben zij in een van de optredens heb ik een opname van, waarin ze eigenlijk een soort solo op dat instrument geven. En dat is echt, onbegrijpelijk wat voor de snelheid waarmee ze daarop spelen, wat voor geluiden eruit komt. Dat is voor mij dat kippenvel muziek.
1: Oké, en heeft u ook een, heeft u misschien voor ons een fragmentje van liggen die wij ook kunnen beluisteren?
3: Ja, die

जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसे हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। दिल समुंदर जैसा रखना, नदियाँ खुद ही मिलने आएंगी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आ जाते हैं, तब तक लौटने को वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम जो हम सब संदेश रखे कि जो फकीर होते हैं, जो गीत गाते रहते हैं और हम भारत में जाते हैं तो हम शायद नहीं जानते थे, पर आज उसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुआ। तो आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए श्रीमान बेई दैग जी हैकन शहर से, शांता खेमई जी बबली, आसरा जी और मैं हूँ सेवक संजय। आशा ये रखता हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कुछ न कुछ सुंदर संदेश ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश से आपको जरूर मिला होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार।

हूँ सैनी पर आप चुन है और यहाँ से आरम्भ होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से।